जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह के सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना। दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन। नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर। आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति हैं। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे

या आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों, दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई में तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जांसे तीन कराओ।
2: सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
1: भिंडा तुरिए आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिए, डीले आवे जोर।
2: सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांचवे महीने बाल ले आ खवानो आल।
1: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

0: એન્ડ બનો ગીત તો આયુષ્ય પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સૌનું ઘણેમાન સ્વાગત કરા હો અમારે આજના કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈ એન્ડ બનો ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે પશુધનમાં અગર પાણીની કમી થઈ જાય તો આના શું પ્રભાવ થઈ શકે. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલા કાર્યક્રમ થકી જોડી રહે મનીષજી સર. તો સબ થકી પહેલા આપણે સાંભળી લો એનાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિજી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद.
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है गर्मियों में पशुधन में पानी की कमी के क्या प्रभाव हैं. हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता हम सभी को होती है. ऐसे में पशुधन में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं वो इस प्रभाव से हमारे पशुओं को बचा सकते हैं.
1: बिल्कुल. देखिए हमारे क्षेत्र में अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे अब ये समय आगे बढ़ेगा गर्मी भी समय के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी. तो गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है यानी कि गर्मी बढ़ती है तो यह पशुओं पर अगर इस समय पानी की कमी होती है तो उसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं.
0: बिल्कुल.
1: और इसके प्रभाव कभी कभी स्थायी होते हैं.
0: जी.
1: पानी की कमी से पशुधन में कई शारीरिक रोग हो सकते हैं, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो सकते हैं, उनके उत्पादन पे इसका असर होता है और हम ये बोल सकते हैं कि उनके संपूर्ण जीवन में कुछ स्थायी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जो इस दौरान पानी की कमी के कारण उन्हें हुई थी तो वो जीवन भर बनी रह सकती है.
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा.
1: तो इस समस्या से बचने के लिए गर्मियों में पशुओं को नियमित रूप से पानी देना और उन्हें ठंडे स्थान पर रखकर उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण होता है.
0: बिल्कुल. तो सर जैसा कि आपने बताया कि पानी किस तरीके से महत्वपूर्ण है यही हमारे अगर पशु में पानी की कमी हो जाती है तो उनके शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है.
1: बिल्कुल. हम इसे इस तरीके से भी अलग अलग रूप में देख और समझ सकते हैं कि शरीर पे होने वाले असर कौन से हैं यदि गर्मियों में पशुधन को पानी की कमी होती है. तो सबसे पहला होता है निर्जलीकरण जिसे हम सामान्य रूप से डिहाइड्रेशन के रूप में जानते हैं. तो गर्मियों में पानी की कमी से पशुधन के शरीर में जो पानी की कमी होती है तो कई बार वो उसे सहन नहीं कर पाते हैं जिससे उनकी त्वचा सूखने लगती है, शरीर के अंगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है जिसके कारण कई बार उनका जो है रक्तचाप बढ़ जाता है या कम हो जाता है. ये होने से इनके जो शारीरिक सामान्य क्रियाएं हैं ये उसको प्रभावित करता है और उनके शरीर में ताजगी की कमी हो जाती है. यानी कि जिस तरह से एक स्वस्थ पशु होता है वो उस तरह से ना होके उसमें कई आलसीपन जैसे लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं.
0: बिल्कुल.
1: दूसरा गर्मी के झटके जिसको बोलते हैं तो ये भी पानी की कमी के कारण हो सकते हैं क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है. यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है तो इससे उन्हें गर्मी का झटका लग सकता है जिसे सामान्य भाषा में हम लू लगना भी बोलते हैं. और कई बार कमजोर पशुओं धन के मामले में ये जानलेवा भी होता है. यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पशुधन सुस्त है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है या तो तेज सांस चल रही है या हम यदि हाथ लगा के देखें ऐसी असामान्य अवस्था हमें नजर आए तो उनके दिल की धड़कनें बड़ी हुई हो सकती हैं.
0: जी जी.
1: तो ये लू लगने के जो है लक्षण होते हैं. इसमें उनके शरीर का तापमान भी जो है बढ़ने लगता है. एक होता है जब अधिक तापमान और पानी की कमी पशुधन के शरीर में होती है तो उनकी कार्यक्षमता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उनकी जो सहन शक्ति होती है
0: जी,
1: वो भी प्रभावित हो जाती है। यानी कि हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है।
0: बिल्कुल।
1: अब शरीर के प्रभाव में चमड़ी पर भी जो है आपको कई बार समस्या देखने को मिलेगी, या फर यानी कि बाल, तो कुछ पशुधन ऐसे होते हैं जिनके बाल घने होते हैं, तो पानी की कमी से पशुधन की त्वचा सूखी और खुरदुरी हो सकती है
0: जी जी।
1: इसके अलावा उनके फर यानी कि बालों को भी नुकसान हो सकता है, या घने बाल वाले पशुधन के जो है बाल गिरने लगते हैं, तो कई बार इनका भी कई पशुपालक व्यवसायिक रूप में उपयोग करते हैं फर का, तो इससे उनको इसमें भी नुकसान होता है। दूसरा, यदि देखा जाए तो चमड़ी के ऊपर जो बाल या फर होते हैं ये छोटी मोटी चोटों को लगने से बचाते हैं, तो यदि ये इसके कारण असमय गिर जाते हैं तो इनसे उनको चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अगर पशुओं में पानी की कमी होती है तो उनके शरीर पर किस तरीके से अलग अलग प्रकार से हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, यही सर पानी की कमी के कारण पशुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जी बिल्कुल, ज़्यादातर पशुधन को उनके उत्पादों के लिए या उनकी कार्य क्षमता के लिए हम उनका पालन पोषण करते हैं, तो दुग्ध देने वाले जो हमारे पशुधन हैं यदि उन्हें इस समय पानी की कमी होती है तो पहला हम इसका प्रभाव देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन घट सकता है, क्योंकि पानी की कमी से उनके शरीर में तरल की कमी हो जाती है और दूध का अधिकांश भाग जो होता है वो तरल होता है, और इसी के कारण उनके दुग्ध के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। दूसरा होता है कि हमारे क्षेत्र में सामान्य रूप से बकरों और बकरियों को पाला जाता है, जिसमें बकरों से जो है विशेष रूप से आमदनी प्राप्त की जाती है, तो यदि पानी की कमी होती है तो इससे उनका वजन घट सकता है, और अन्य नकारात्मक परिणाम जिन्हें हम बोल रहे हैं कि ये शरीर पर असर करते हैं ये भी हो सकते हैं। तो इन नकारात्मक परिणामों के चलते उनका जो लाभ है वो कहीं शून्य ना हो जाए, इसका भी आशंका बनी रहती है।
0: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि पानी की कमी के कारण हमारे जो पशु हैं उनके दूध के उत्पादन में गिरावट आती है, साथ ही अगर हम कुछ ऐसे पशु पाल रहे हैं जिनका वजन बढ़ना चाहिए और वो नहीं बढ़ता है तो ये भी पानी की कमी का एक कारण हो सकता है। यही सर, क्या प्रजनन और संतति पर भी इसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है?
1: जी बिल्कुल, यदि प्रजनन पर इसके प्रभाव देखें तो पानी की कमी के कारण विशेष रूप से मादा पशुधन में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे या तो उनके गर्मी पे आने का समय लंबा हो सकता है, कई बार गर्भपात की समस्या भी देखने को मिलती है
0: जी जी।
1: तो इस तरह से प्रजनन और संतति पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, यदि देखा जाए तो जो छोटे बछड़े होते हैं वो या तो होने वाले हैं या वो हो चुके हैं और बहुत छोटे हैं, तो अगर होने वाले हैं तो गर्भवती पशुधन में पानी की कमी के कारण भ्रूण का विकास प्रभावित होता है।
0: बिल्कुल।
1: और इससे कमजोर संतति का जन्म होता है जो आगे आने वाले समय में उनके उत्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा, यदि बहुत छोटे जो बछड़े हैं उनके शरीर में पानी की कमी होती है तो उनके भी आगे होने वाले उत्पादन को ये प्रभावित करता है, चाहे वो नर हो या मादा, तो स्थायी रूप से कई बार इसके नुकसान देखने को मिले हैं।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी बातों को हमें बता रहे हैं, तो क्या कोई और भी प्रभाव है जो पशुओं पर पानी की कमी के कारण हमें देखने को मिलते हैं?
1: जी बिल्कुल, इसका जो एक सीधा प्रभाव होता है वो उनके पाचन तंत्र पे भी होता है। यदि पशुधन के शरीर में पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी भूख में भी कमी हो जाती है। और इसका कारण होता है कि पानी की कमी से पशुधन का चयापचय धीमा पड़ जाता है, जिससे उनकी भूख कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और भूख कम होने से उन्हें उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना खाना या चारा उन्होंने खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसे नहीं खाने से उनके उत्पादन में ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पाचन संबंधी समस्या की यहाँ बात की जाए तो पानी की कमी के कारण चारा जो उन्होंने खाया है उसके पचने में भी कठिनाई होती है, जिससे उनका पाचन तंत्र जो है ठीक से काम नहीं करता।
0: बिल्कुल।
1: इससे कब्ज हो सकता है, गैस हो सकती है या पेट में अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इन समस्याओं से भी हमारे पशुधन प्रभावित होते हैं। बीमारियों का खतरा भी इस स्थिति में बढ़ जाता है। जैसे शरीर में पानी की ज़्यादा कमी होती है, उससे ये जो हमने अभी समस्याएं देखी तो कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि प्रभावित होती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इस समय जो ज़्यादातर बीमारियां आसानी से होती हैं उसमें दस्त लग सकते हैं, मूत्र रोग का संक्रमण हो सकता है या त्वचा के रोग हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो सर यहीं बात करना चाहेंगे कि इसके निवारण के क्या उपाय हमारे पशुपालक भाई बहनों को अपनाने चाहिए।
1: बिल्कुल, निवारण के उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम इन उपायों को कर सकते हैं, जिससे इनका निवारण भी हो सकता है और ये उपाय हैं। तो यानी कि उपाय करने से हमें समस्या आएगी ही नहीं। हमेशा हमारे पशुधन के लिए पशुशाला के पास में, पशु शेड के पास में पशुधन के लिए ताज़ा, ठंडा और साफ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: हो सके तो पशुधन को छायादार स्थान पर ही रखें और गर्मी से बचाव के लिए हवादार जगह जो हो वहाँ पे उन्हें रखें, जहाँ पे गर्म हवा या लू ना लगे।
0: बिल्कुल।
1: इस समय क्योंकि पशुधन ज़्यादा हरा चारा नहीं मिल पाता और इस कारण उनको नहीं दे पाते हैं, तो यदि हो सके तो अन्य तरीके से उनकी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अगर हमारे पशुपालकों के आसपास चारागाह हैं तो उनमें संभव हो तो सिंचाई का प्रबंध करें, जिससे गर्मियों में भी उन चारागाहों में थोड़ी बहुत हरी घास बनी रहे और वो पशुधन को उपलब्ध हो।
0: बिल्कुल।
1: यदि पशुधन को हम ज़्यादा समय बांध के रखते हैं तो दिन में 3 से 4 बार कोशिश करें कि पशुधन को पानी पिलाएं। हो सकता है उसमें से एक आध बार वो न भी पिए, पर आप नियमित अंतराल पे उनको पानी देते रहें।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो अंत में अगर निचोड़ रूप में हम इसकी बात करें तो गर्मियों में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन पर पानी की कमी के जो गंभीर प्रभाव हो सकते हैं उनसे बचने के लिए उचित देखभाल और सही तरीके से प्रबंधन करें। इससे पशुधन स्वस्थ रहेंगे, उनकी उत्पादन को स्थायी बनाया जा सकता है, और वही है यदि हमेशा हम उनके लिए ठंडा और साफ ताज़ा पानी रखें और जिस टंकी में हम उस पानी को रख रहे हैं उनको पिलाने के लिए उसमें नियमित अंतराल पर चूने की पुताई करते रहें, जिससे पानी की गुणवत्ता

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थी जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध कर की नर ने खुल्लो नीर राखवो, बारिश ने पानी नो संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नो जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृतिपूर्ण, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नो मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित है।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि बचपन को जीवन का सबसे सुंदर और निश्चित समय माना जाता है। यह वह अवस्था मानी जाती है जहाँ मासूमियत, हंसी, खेल और उत्साह भरा होता है।
0: जी हाँ,
1: बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं और हर दिन को नए उत्साह के साथ जीते हैं। लेकिन आज के समय में एक चिंता तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, वो है बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि कशिश, अब पहले की तरह बच्चों में धैर्य कम दिखाई देता है। छोटी सी बात पर गुस्सा करना, बात न मानने पर रोना, जल्दी नाराज होना, किसी से ठीक से बात न करना या हर समय तनाव में रहना जैसी आदतें बच्चों में बढ़ती ही जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: यह केवल व्यवहार की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ एक गंभीर संकेत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है। साथियों, हम देखते हैं कि बच्चों का चिड़चिड़ा होना केवल उनका स्वभाव नहीं होता, बल्कि अंजलि जी, इसके पीछे ढेर सारे कारण भी छिपे हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय रहते इन कारणों को नहीं समझा गया तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व, पढ़ाई और साथ साथ रिश्तों और भविष्य पर भी पड़ सकता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि चिड़चिड़ापन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा, नाराज या फिर परेशान हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों में ये कई रूपों में दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर बच्चा बार बार गुस्सा कर रहा है तो वो चिड़ा हुआ है। जिद करना, बात बात पर रोना, किसी की बात न सुनना और न ही किसी से बात करना, जल्दी परेशान हो जाना, अकेले रहना और दूसरों से लड़ना। हम देखते हैं कि ये सभी व्यवहार कई बार बच्चों की अंदरूनी परेशानी का संकेत हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों, बात करें कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने के क्या कारण है, तो सबसे पहली बात आती है मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। आज के बच्चे बहुत कम उम्र में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम से जुड़ जाते हैं। घंटों स्क्रीन देखने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और धैर्य कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चा वास्तविक दुनिया से कटने लगता है। जब बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता तो वे गुस्सा करने लगते हैं और धीरे धीरे ये आदत चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है।
0: जी हाँ।
1: आज का बच्चा कशिश बहुत छोटी उम्र से ही प्रतियोगिताओं का सामना कर रहा है। अच्छे नंबर लाने का दबाव, हर क्षेत्र में आगे रहने की होड़, माता पिता की अपेक्षाएं, इन सब के कारण बच्चा मानसिक तनाव महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता और चिड़चिड़ा होने लगता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आजकल व्यस्त जीवन शैली के कारण कई माता पिता बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते, जिसके कारण बच्चे जो हैं वे अपनी बातें साझा नहीं कर पाते, अकेलापन महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह स्थिति धीरे धीरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। अगर घर में झगड़े होते हो, हर समय तनाव रहता हो, बच्चों को डांटा जाता हो, तो उसका सीधा असर बच्चों के मन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: डर, तनाव और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि कम नींद बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। नींद पूरी न होने पर बच्चा जल्दी गुस्सा करता है।
0: बिल्कुल,
1: ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हर समय थका हुआ महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अगर इसी के आगे बात करें गलत खान पान की, तो हम देखते हैं कि जंक फूड और अनियमित भोजन भी बच्चों के व्यवहार पर असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोस्तों, ज्यादा चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या पैकेट वाले स्नैक्स बच्चों के दिमाग और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर दोस्तों की बात करें तो अंजलि जी, बच्चा अगर स्कूल में परेशान किया जाता हो, दोस्त न बना पा रहा हो या फिर तुलना का सामना कर रहा हो, तो उसके अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है।
1: इसी के साथ कशिश, अब बात आती है कि जब बच्चों को हर समय यह मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत बोलो, तुम गलत हो, जैसे बातें सुननी पड़ती है, तो वे खुद को दबा हुआ महसूस करने लगते हैं। और इन सारी चीजों का प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: रिश्तों पर पड़ता है, उनका आत्मविश्वास कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान ही पा रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कारण और प्रभाव के बारे में तो हमने जाना, आगे हम जानेंगे कि क्या समाधान हो सकते हैं। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हमारे साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बच्चों में चिड़चिड़ापन जो बढ़ जाता है उसके क्या समाधान है।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले हमें बच्चों को समय देना है। अक्सर कशिश हम देखते हैं कि बच्चों की शिकायत रहती है कि उनके माता पिता के पास उनके लिए समय ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना है, उनसे बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है और उनके साथ खेलना है। मोबाइल और टीवी का समय तय होना चाहिए। अधिकतर माता पिता इधर उधर व्यस्त रहते हैं और वो खुद ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या टीवी देखने के लिए दे देते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी देर टीवी देख रहा है, कितनी देर मोबाइल देख रहा है। यही कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि खेल और शारीरिक गतिविधियां भी हमें बढ़ानी है।
1: जी हाँ।
0: आउटडोर गेम्स, योग, साइकिल चलाना, नृत्य, इन सबसे बच्चों का मन शांत रहता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ माता पिता को बच्चों को हर बात पर डांटने के बजाय समझने की कोशिश करनी है। समय पर सोना, पौष्टिक भोजन देना और नियमित दिनचर्या अपनाएं दोस्तों, क्योंकि जब बच्चों की सही दिनचर्या होती है तो वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वहीं अगर रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात करें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को ढेर सारी गतिविधियों में भाग लेना बड़ा अच्छा लगता है साथियों। ऐसे में माता पिता कई बार व्यस्त रहते हैं जिसके कारण वे बच्चों की रुचियों को पहचान नहीं पाते। ऐसे में दोस्तों, जो रचनात्मक गतिविधियां होती है उन्हें आप बढ़ावा दें, जैसे कि बच्चों को आप चित्रकला करवाएं, कहानी पढ़वाएं, संगीत सिखा सकते हैं या फिर हस्तकला भी करवा सकते हैं।
0: जी जी।
1: इनसे अंजलि जी बच्चों में अलग अलग क्षेत्र को लेकर रुचि भी बढ़ेगी, साथ ही उनका तनाव भी कम होगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर दोस्तों बच्चा दुखी है, गुस्से में है या फिर डर रहा है, तो उसकी भावनाओं को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि अंजलि जी ऐसे में माता पिता को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब माता पिता बहुत ज्यादा सख्त या कठोर होते हैं तो बच्चे कई ऐसी बातें हैं जो माता पिता को नहीं बता पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों की बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और उनको जो भी परेशानी हो रही है उसका जल्द से जल्द हल निकाले।
0: बिल्कुल कशिश, समाज और स्कूल की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सके।
1: जी।
0: समाज को बच्चों की भावनाओं को समझने की जरूरत है, न कि उन्हें जिद्दी कहकर नजरअंदाज करने की। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर चिड़चिड़े बच्चे के पीछे एक अनसुनी भावना छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: जरूरत केवल उसे डांटने की नहीं बल्कि समझने की होती है। बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन केवल एक छोटी आदत नहीं बल्कि यह बदलती जीवन शैली, बढ़ते तनाव और भावनात्मक दूरी का परिणाम है। बच्चों का गुस्सा कई बार उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी अनकही परेशानियों की आवाज होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है कि हम उनके व्यवहार को केवल गलत आदत समझकर नजरअंदाज न करें बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझे।
1: जी
0: हाँ। हमें बच्चों को ऐसा वातावरण देना होगा जहाँ वे सुरक्षित, खुश और समझे हुए महसूस करें, जहाँ उन्हें केवल नियम न मिले बल्कि प्यार, समय और अपनापन भी मिले। क्योंकि जब बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तभी वे जीवन की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों आप याद रखें कि हर बच्चा ध्यान, प्यार और समझ का हकदार है। अगर हम बच्चों की भावनाओं को समय रहते समझ लें तो हम न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: और हमने जाना कि हमें किस प्रकार से बच्चों के चिड़चिड़ेपन के जो स्वभाव है उसे समझना है और उसे नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि इसके पीछे बच्चों की कई अनसुनी कहानियां होती है या फिर भावनाएं होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में उनकी बातों को हमें समझना है, उनकी भावनाओं को हमें समझना है।
0: जी हाँ।
1: तो बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।

0: साथियों, कभी कभी बच्चे गुस्से में नहीं होते, वे बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। बच्चों की आवाज को सुनना सीखिए, क्योंकि चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कहती है। पर मुस्कुराता बच्चा जरूरी नहीं कि खुश हो, कई बार उसकी हंसी के पीछे थकान छिपी होती है। इन्हीं बातों के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि हमें सबसे कटकर नहीं बल्कि जुड़कर भी आत्मनिर्भर बनना है। आज का समय आत्मनिर्भरता का समय है मनीषा। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है।
0: जी हाँ।
1: अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता
0: बिल्कुल।
1: है लेकिन अक्सर लोग आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले चलना, सबसे अलग हो जाना और केवल अपने बारे में सोचना समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे मानते हैं कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें दूसरों से कटना होगा।
0: जी हाँ।
1: जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जुड़ाव है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार, समाज, मित्र, सहयोग और सामूहिक प्रयास ही किसी व्यक्ति को वास्तव में मजबूत बना सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे कटकर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय आत्मनिर्भरता का समय माना जाता है। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सक्षम होना भी है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई लोग आत्मनिर्भर बनने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, अकेले रहना पड़ता है। श्रोता साथियों, किसी की मदद न लेना ये सब मान लेते हैं, जबकि श्रोता साथियों सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
1: जी हाँ।
0: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज, परिवार और रिश्तों के सहारे आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह सबसे कटकर ही सफल हो सकता है तो श्रोता साथियों यह सोच अधूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग, प्रेम, विश्वास और आपसी संबंध की आवश्यकता होती है। वास्तव में श्रोता साथियों, जुड़कर चलने वाला व्यक्ति अधिक मजबूत बनता है क्योंकि उसे अनुभव, प्रेरणा और सहयोग भी मिलता है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि कहा गया है कि रिश्तों की डोर थामकर चलेंगे तो आत्मनिर्भरता की राह आसान होगी।
0: जी हाँ।
1: आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है श्रोताओं, इसका अर्थ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना है। एक व्यक्ति तब पूर्ण आत्मनिर्भर बनता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चलना सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि कोई व्यक्ति सबसे कटकर जीने लगे, किसी की सलाह न माने और हर कार्य अकेले करने की कोशिश करे तो श्रोताओं धीरे धीरे उसका जीवन तनाव और अकेलेपन से भर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत ही जो व्यक्ति लोगों को साथ लेकर चलता है वो कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। इसलिए कहा गया है मनीषा कि साथ चलने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वही सच्चा आत्मनिर्भर बनता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसीलिए हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि सबसे कटकर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब श्रोता साथियों अकेले नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का सीधा अर्थ है अपने कार्य स्वयं करने की सक्षमता हमें विकसित करनी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति किसी के संबंध को तोड़ दे। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जागृति जी वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने कर्तव्यों को स्वयं समझे और उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखे। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता के कई रूप होते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, मानसिक रूप से आत्मनिर्भरता, सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भरता। यदि जागृति जी कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में लग जाए लेकिन उसके रिश्ते टूट जाए तो वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं कहलाएगा।
1: बिल्कुल।
0: सच्ची आत्मनिर्भरता साथियों वही है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना के जिए।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ अपनापन होता है वही आत्मनिर्भरता कहलाती है। हमारे परिवार का उदाहरण ही सबसे बड़ा प्रमाण है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है लेकिन सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मनीषा, माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे घर में खुशियां लाते हैं, परिवार के सदस्य कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि परिवार का हर सदस्य ये सोच ले कि उसे किसी की जरूरत नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। इसी प्रकार समाज भी आपसी जुड़ाव से चलता है। आज के समय में संयुक्त प्रयासों की शक्ति को दुनिया ने समझा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं और संगठन अकेले व्यक्ति के दम पर नहीं चलते हैं, वहाँ टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल।
1: एक व्यक्ति के पास ज्ञान हो सकता है लेकिन सभी लोगों की अलग अलग क्षमताएं मिलकर सफलता का बड़ा रास्ता बनाती है।
0: जी हाँ।
1: यदि किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक और वैज्ञानिक सब अलग अलग हो जाए तो मनीषा देश का विकास रुक जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का असली आधार सहयोग है। कहा गया है कि मिलजुल कर बढ़ने वाला समाज ही सच्चे विकास की पहचान बनता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, हम जान रहे थे कि सबसे कटकर नहीं बल्कि जुड़कर भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मनीषा, यही हमारे युवा साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ दूर भी किया है। लोग ऑनलाइन तो हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में लोग भावनात्मक रूप से अकेले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में जरूरत है श्रोताओं कि हम अपने रिश्तों को समय दें, लोगों से संवाद करें और सामूहिकता की भावना को बनाए रखें।
1: जी हाँ।
0: कहा गया है कि तकनीक जरूरी है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म से ही दूसरों से जुड़ा रहता है। एक बच्चा अपने माता पिता के सहारे बड़ा होता है, शिक्षक उसे शिक्षा देते हैं, मित्र उसे सहयोग देते हैं, समाज उसे अवसर प्रदान करता है। यदि श्रोता साथियों यह सब न हो तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र किसी न किसी रूप में दूसरों से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: किसान अन्न उगाता है, शिक्षक शिक्षा देता है, डॉक्टर इलाज करता है और मजदूर निर्माण करता है। साथियों, हर व्यक्ति दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। यही सामाजिक जुड़ाव हमें और मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कट जाए कि वह अकेले सब कुछ कर लेगा, तो धीरे धीरे उसका जीवन कठिन हो जाएगा और तनावपूर्ण हो जाएगा। जागृति जी,
0: जी हाँ,
1: इसीलिए समाज के साथ जुड़कर चलना ही समझदारी है।
0: बिल्कुल मनीषा, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि एकता में शक्ति है और शक्ति में ही आत्मनिर्भरता है।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी यही सिखाता है कि जब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर साथ काम करती है तो वे आर्थिक रूप से भी मजबूत बनती है। मनीषा,
1: बिल्कुल,
0: वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है, नई चीजें सीखती है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती है।
1: जी
0: ये
1: हाँ।
0: साबित करता है श्रोताओं कि जुड़ाव और सहयोग आत्मनिर्भरता की राह को और मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ।
0: देश की आत्मनिर्भरता भी केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं हो सकती, इसके लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। जब लोग स्थानीय वस्तु को अपनाते हैं मनीषा, छोटे व्यापारियों का समर्थन करते हैं और समाज के विकास में भाग लेते हैं, तभी देश मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है। परिवार ही हमें संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी सिखाता है।
0: जी हाँ।
1: एक मजबूत परिवार व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आज कई युवा यह सोचते हैं कि स्वतंत्र बनने के लिए परिवार से दूरी बनाना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि परिवार के साथ व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो परिवार उसे संभालता है और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल।
1: एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से जुड़ा रहता है वह जीवन में अत्यधिक संतुलित और सफल बनता है। परिवार के सहयोग से व्यक्ति आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ पाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी हमारे युवा साथियों को हम सुनाते हैं। श्रोता साथियों, एक गांव में दो युवक रहते थे। पहला युवक हमेशा कहता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब काम करता था।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा युवक था, वो लोगों से जुड़कर रहता था मनीषा, सबकी मदद करता था, जरूरत पड़ने पर दूसरों से सहायता भी लेता था। और एक बार गांव में बाढ़ आ गई।
1: जी।
0: पहला युवक अकेला पड़ गया और अपनी चीजें नहीं बचा सका, लेकिन दूसरे युवक की मदद के लिए पूरा गाँव खड़ा हो गया।
1: जी हाँ।
0: उस दिन पहले युवक को समझ आया कि आत्मनिर्भरता का मतलब अकेलापन नहीं बल्कि संबंधों की ताकत के साथ आगे बढ़ना है।
1: जी हाँ।
0: और कहा गया है कि जो दूसरों का सहारा बनता है वही मुश्किलों में सहारा पाता है। तो श्रोताओं, हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी होगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन संवेदनाएं और संबंध उससे भी अधिक जरूरी है। यदि सफलता पाने के बाद इंसान अकेला रह जाए तो वो सफलता अधूरी है।
1: जी हाँ।
0: सच्ची उपलब्धि तो वही है जिसमें अपने साथ दूसरों का भी विकास हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: वही सफलता महान है जिसमें सबका सम्मान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेलापन ही नहीं, सबसे कट जाना, रिश्तों को तोड़ देना या किसी की सहायता न करना आत्मनिर्भरता नहीं कहलाती है। सच्ची आत्मनिर्भरता वह है साथियों जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझते हुए समाज, परिवार, रिश्तों के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हमें जुड़ाव, प्रेम, सहयोग, अनुभव हमें आत्मविश्वास देते हैं। यही चीजें हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जागृति जी दूसरों के साथ मिलकर चलता है वह अधिक सफल, संतुलित और खुश रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों को समझना चाहिए कि सबसे कट कर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर वे बन सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता का मार्ग अकेलेपन से नहीं बल्कि जुड़ाव से होकर गुजरता है। मनुष्य जितना दूसरों से जुड़ता है उतना ही मजबूत बनता है। परिवार, समाज, मित्र और सहयोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं मनीषा
1: जी। हाँ।
0: हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहाँ लोग एक दूसरे का साथ पकड़कर आगे बढ़े, क्योंकि अकेला व्यक्ति शायद तेज चल सकता है लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम आत्मनिर्भरता को स्वार्थ और अलगाव से न जोड़ें। हमें ये समझना होगा कि सहयोग, प्रेम, संवाद और सामूहिक प्रयास ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब हम दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी सफलता स्थायी और सार्थक बनती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें कटने नहीं बल्कि जुड़ने की संस्कृति अपनानी होगी।
1: जी हाँ।
0: यही सच्ची आत्मनिर्भरता है, यही मानवता की असली पहचान है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कट कर नहीं, जुड़ कर बढ़े, अकेले नहीं मिलकर आत्मनिर्भर बने। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातचीत रहने वाली है, समय की बर्बादी जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उपचार से सुधार किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि समय को जीवन का आधार माना गया है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो जीवन में सफलता, सम्मान और संतुलन प्राप्त करता है।
0: बिल्कुल।
1: जबकि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है उसका जीवन धीरे धीरे अव्यवस्थित, तनावपूर्ण और असफलताओं से भर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के आधुनिक युग में श्रोताओं, मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस्य, अनावश्यक मनोरंजन और टालमटोल की आदत ने समय की बर्बादी को एक गंभीर समस्या बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: कहा भी गया है कि समय का जो करे सम्मान, सफलता बने उसकी पहचान।
0: बिल्कुल। तो आज जागृति जी इस विषय पर श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और बातचीत भी रही थी कि आज हमारी बातचीत का विषय है समय की बर्बादी जीवन को कैसे प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, समय की बर्बादी सबसे पहले व्यक्ति के लक्ष्य को प्रभावित करती है। हर इंसान के जीवन में कुछ सपने होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई व्यवसायी तो कोई कलाकार। लेकिन केवल सपने दिखना पर्याप्त नहीं होता,
1: बिल्कुल
0: उन्हें पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। जो विद्यार्थी पढ़ाई के समय मोबाइल चलाते हैं, घंटों बेकार बातचीत करते हैं या काम को कल पर टाल देते हैं, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी व्यक्ति के सपनों को कमजोर कर देती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज के समय में समय की बर्बादी एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि लोग घंटों मोबाइल, बेवजह की चर्चाएं, आलस्य और टालम टोल में समय गवा देते हैं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह आदत जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने लगती है। कई लोग यह महसूस ही नहीं कर पाते जागृति जी कि छोटी छोटी समय की बर्बादियां मिलकर बड़े नुकसान का कारण बन रही है। समय की कीमत केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं रहती है श्रोता साथियों, बल्कि इसका असर स्वास्थ्य, रिश्तों, मानसिक स्थिति, परिवार और समाज सभी पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वह अक्सर जीवन में अवसर खो देता है और बाद में पछतावा महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, समय की बर्बादी मानसिक तनाव को भी बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति जरूरी कार्य समय पर पूरा नहीं करता अंजलि, तब उसके ऊपर काम का बोझ पड़ने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: धीरे धीरे चिंता, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगती है। कभी कभी विद्यार्थी परीक्षा के समय तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ष समय का सही उपयोग नहीं किया होता। इसी प्रकार नौकरी करने वाले लोग भी कार्य समय पर पूरा न होने के कारण तनाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय की बर्बादी मानसिक शांति छीन लेती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि समय की बर्बादी का अर्थ केवल खाली बैठना नहीं है, ऐसे कामों में जरूरत से ज्यादा समय खर्च करना है जो जीवन में कोई सकारात्मक लाभ नहीं देते, समय की बर्बादी कहलाते हैं। श्रोता साथियों, शुरुआत में ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान की दिनचर्या, सोच दोनों प्रभावित करने लगती है। कहना चाहेंगे कि कई लोग काम को कल पर टाल देते हैं, धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आज पढ़ाई नहीं कल करेंगे, आज काम नहीं बाद में कर लेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, ऐसे सोच इंसान को धीरे धीरे पीछे ले जाती है। टालम टोल के कारण हम देखते हैं कि काम का दबाव बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समय की बर्बादी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को रोक देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि व्यक्ति अपना समय केवल मनोरंजन, गपशप और आलस्य में बिताएगा तो वो कभी अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाएगा। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई कला सीखते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वही समय बर्बाद करने वाले लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। जैसे कि समय ही धन है, यदि कोई व्यक्ति समय पर अपने कार्य नहीं करता अंजलि, तो उसकी आय और अवसर दोनों ही कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: व्यापारी यदि समय का पालन न करे, किसान यदि सही समय पर खेती न करे या कर्मचारी समय पर काम पूरा न करे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया में वही लोग सफल है जिन्होंने समय की कीमत समझी और उसका सही उपयोग किया।
2: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि समय की बर्बादी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं करता तो परिवार में तनाव बढ़ता है, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है। कई बार लोग मोबाइल और मनोरंजन में इतना समय बिताते हैं कि परिवार के साथ बातचीत और अपनापन कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
2: समय की बर्बादी श्रोता साथियों धीरे धीरे मानसिक दबाव भी बढ़ाती है। जब जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो चिंता महसूस करता है, अपराध बोध रहता है और तनाव में रहने लगता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि वह जीवन में पीछे छूट रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समय की बर्बादी रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आज लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार को समय देना भूलते जा रहे हैं। माता पिता, भाई बहन और मित्रों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब व्यक्ति केवल अपने मनोरंजन में समय गवाता है तब रिश्तों में दूरी आने लगती है, परिवार में संवाद कम हो जाता है और अकेलापन बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। देर रात तक मोबाइल चलाते हैं हम, घंटों टीवी देखते हैं, बिना उद्देश्य के समय बिताते हैं, हमारा जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। इससे से नींद पूरी नहीं होती, आंखों पर असर पड़ता है और शरीर में आलस्य बढ़ता है।
2: बिल्कुल,
0: समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अंजलि व्यायाम, योग, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, जिससे उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से अगर हम समय की बर्बादी करते हैं तो उसका असर जो है पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। श्रोता साथियों, जीवन में कई अवसर केवल एक बार आते हैं। अगर व्यक्ति सही समय पर तैयारी न करे तो वो मौका हाथ से निकल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: नौकरी का अवसर, पढ़ाई का मौका, रिश्तों को सुधारने का समय, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर, समय की बर्बादी इन सभी संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जब समाज में बड़ी संख्या में लोग समय के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो उसका असर विकास पर भी पड़ता है। काम में देरी, जिम्मेदारी की कमी, अनुशासनहीनता, उत्पादकता में गिरावट, ये सब सामाजिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। जो समय का सम्मान करने वाला समाज अधिक संगठित होता है और मजबूत भी होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें सही दिनचर्या बनानी होगी। जरूरत और गैर जरूरी कामों में फर्क समझना होगा, मोबाइल का सीमित उपयोग करना होगा और छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे और काम को टालने की आदत छोड़नी होगी। परिवार और खुद के लिए समय निकालना होगा, तभी हम हमारे जीवन को संतुलित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमें समझना होगा कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की धड़कन है।
0: बिल्कुल,
1: हर बीतता पल हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि हम समय का सम्मान करेंगे तो जीवन में प्रगति, खुशी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन यदि हम समय को व्यर्थ गवाते रहेंगे तो एक दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
0: ये कह सकते हैं कि समय की बर्बादी जीवन को कमजोर, अव्यवस्थित और दुखी बना देती है। ये हमारे सपनों, स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य सभी को प्रभावित करती है। इसलिए हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना होगा, हर पल का सही उपयोग करना होगा। जीवन की असली सफलता उसी को मिलती है अंजलि, जो समय को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लेता है।
1: जी हाँ,
0: समय रुकता नहीं श्रोता साथियों किसी के लिए भी, इसलिए हर पल को मूल्यवान बनाइए।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि समय जीवन की वह अनमोल धरोहर है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उपयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
0: श्रोता साथियों, समय की बर्बादी धीरे धीरे आदत बनकर इंसान की सोच, काम, रिश्तों और भविष्य को प्रभावित करने लगती है। जीवन में सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि समय का सही उपयोग करने से मिलती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि लापरवाही और टालमटोल इंसान को पीछे धकेल देती है। श्रोता साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और समझे कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है।
1: जी हाँ,
0: छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर व्यक्ति समय को समझना सीख जाए तो वह न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकता है बल्कि परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को स्पष्ट हो जाता है कि समय की बर्बादी केवल कुछ घंटों या दिनों का नुकसान नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है वो अवसर, आत्मविश्वास, सफलता और खुशियों को अपने हाथों से खो देता है।
0: जी जी,
1: बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता श्रोता साथियों, इसलिए हर पल की कीमत समझना बहुत जरूरी है। जीवन का हर एक क्षण नई शुरुआत, एक नया अवसर और एक नई उम्मीद लेकर आता है। यदि हम आज समय का सही उपयोग करना सीख लेंगे तो हमारा आने वाला कल उज्जवल, सफल और सम्मानपूर्ण बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये ध्यान लेना चाहिए कि हम आलस से, टालमटोल और अनावश्यक कार्यों में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने समय को शिक्षा, मेहनत, परिवार, समाज और आत्मविकास के लिए उपयोगी करेंगे, क्योंकि समय वही दीपक है जो जीवन के अंधकार को सफलता के प्रकाश में बदल देता है।
0: बिल्कुल,
1: जब इंसान समय का सम्मान करता है तब समय भी उसे सम्मान, पहचान और ऊंचाइयां देता है। इसीलिए श्रोताओं, हर सुबह स्वयं से कहना चाहिए कि आज का एक एक पल मेरे सपनों की नींव है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है श्रोता साथियों कि समय को मत गवाओ, यही जीवन का सच्चा धन है और जो हर पल का मूल्य समझता है सफलता उसी के संग होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने जाना कि समय का क्या महत्व है और समय की बर्बादी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: आखिर इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम में समय के महत्व को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vangdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

सुविधा के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विषय होता है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा हमारे श्रोता साथियों से हमारे रात के खान पान को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रात के खान पान को लेकर गंभीर नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और कई बार ऐसा होता है कि वो किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेवी खाना खा लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: जिसके कारण हम देखते हैं कि उन्हें एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना और कह सकते हैं कि खट्टी डकार आना, ऐसी ढेर सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि रात का खान पान हमारा कैसा होना चाहिए और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रात के खान पान को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य के स्वस्थ जीवन में भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है।
1: बिल्कुल
0: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में श्रोता साथियों, लोग सुबह और दोपहर के भोजन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन रात के भोजन को अक्सर हल्के में ले लेते हैं। कशिश
1: जी,
0: कई लोग देर रात तक भारी भोजन करते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, या भोजन करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वह सो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: ऐसी आदतें श्रोता साथियों धीरे धीरे शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देती है।
1: बिल्कुल
0: साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि रात का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को आराम देने, ऊर्जा संतुलित बनाए रखने और अगले दिन के लिए शरीर को तैयार करने का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल
0: यदि रात का खान पान सही हो तो श्रोता साथियों नींद भी अच्छी आती है, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है और शरीर भी हमारा स्वस्थ बना रहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, दूसरी ओर यदि रात का भोजन गलत हो तो मोटापा, गैस, अपच, अनिद्रा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि रात के भोजन का एक विशेष महत्व बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो दिन भर काम में लगा रहता है। सुबह और दोपहर में शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों उस समय शारीरिक गतिविधियां अधिक होती है। लेकिन वहीं रात का जो समय होता है वो विश्राम का समय होता है।
0: जी हाँ कशिश,
1: इसलिए रात का भोजन हमेशा हल्का, सुपाच्य और संतुलित होना चाहिए। साथियों हम देखते हैं कि रात में हमारा शरीर धीरे धीरे आराम की अवस्था में पहुंचता है। मनीषा, ऐसे समय में यदि भारी, तला भुना या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन कर लिया जाए तो पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया था कि गैस, अपच, एसिडिटी और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों रात का सही भोजन शरीर को आराम देता है।
0: जी हाँ,
1: नींद को बेहतर बनाता है और अगले दिन शरीर को फिर से ऊर्जा से भर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रात के भोजन का हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व होता है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि रात का भोजन पूरे दिन के खान पान का अंतिम भाग होता है। दिन भर काम करने के बाद श्रोता साथियों शरीर को आराम और संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: यदि रात का भोजन उचित मात्रा में और सही प्रकार से हो कशिश, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारी पाचन क्रिया है वो भी ठीक से काम करती है। श्रोता साथियों, रात का भोजन हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि पाचन तंत्र की कार्य क्षमता, नींद की गुणवत्ता, शरीर का वजन, मानसिक शांति, हृदय स्वास्थ्य और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता। श्रोता साथियों, यदि भोजन बहुत भारी हो तो शरीर को उसे पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे नींद प्रभावित होती है हमारी और साथ ही सुबह सुस्ती महसूस होती है। वही श्रोता साथियों, अगर हम हल्का भोजन करते हैं और संतुलित भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारी मानसिक शांति भी सही बनी रहती है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं रात के भोजन के महत्व को लेकर,
0: जी,
1: और हमारा रात का भोजन कैसा होना चाहिए ये भी हम श्रोता साथियों को बताएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि रात का भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, और गीत से पहले हम रात के भोजन के महत्व को लेकर बातचीत कर पाए थे।
1: जी हाँ,
0: अब यही अगर बात करें मनीषा कि रात का भोजन हमें किस समय करना चाहिए।
1: जी,
0: क्योंकि जैसा कि आपने गीत से पहले हमारे साथियों को बताया था कि कई बार हम देर रात तक भोजन करते हैं, जिसके कारण भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में दोस्तों आपको बताएं तो कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भी ऐसा बताया जाता है कि रात का भोजन सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: यदि कोई व्यक्ति रात में 10 बजे सोता है मनीषा, तो उसे 7 से 8 बजे के बीच भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, देर रात भोजन करने से भोजन ठीक से नहीं पचता है, क्योंकि सोते समय शरीर की गतिविधियां धीमी हो जाती है। इससे भोजन पेट में भारीपन पैदा करता है दोस्तों।
1: जी,
0: और आजकल तो हम ये देखते हैं कि कई लोग मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए या फिर काम करते करते बहुत देर तक भोजन करते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और मनीषा, ये जो आदत है हमारे श्रोता साथियों की, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है।
1: जी हाँ,
0: तो ऐसे में हम हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें भी आदत है देर रात तक भोजन करने की या फिर लेट भोजन करने की, तो उन्हें हम कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्हें भी सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दिन के समय हमारा शरीर अधिक सक्रिय रहता है, इसीलिए हमारा शरीर ही वो भोजन को जल्दी पचा लेता है। लेकिन श्रोता साथियों, रात में शरीर है वो हमारी आराम की अवस्था में होता है। इस समय भारी भोजन करने से पाचन तंत्र हमारे लिए अतिरिक्त दबाव डालता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हल्का भोजन करने से हमें कई प्रकार के फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेट हल्का रहता है, हमें नींद अच्छी आती है, साथ ही हमारा मोटापा नियंत्रित रहता है, शरीर में आलस कम होता है और हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हल्के भोजन में दाल, रोटी, हरी सब्जियां, सलाद, खिचड़ी, दलिया, ये सभी आप शामिल कर सकते हैं। वहीं अत्यधिक तेल मसाले वाला भोजन, फास्ट फूड और मिठाइयों का सेवन कम करना चाहिए साथियों।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, रात के भोजन के खान पान के लिए हमें हरी सब्जियों का सेवन करना है, जैसे कि हरी सब्जियों में विटामिन, खनिज और रेशों से भरपूर होता है। ये भोजन श्रोता साथियों हल्का होता है और हमारे लिए पौष्टिक होता है। रात के भोजन में पालक, लौकी, तोरई, भिंडी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां आप खा सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि रात का भोजन पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। इसमें श्रोता साथियों, ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो आसानी से पच जाएं और शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमें दालों को शामिल करना है, हरी सब्जियों को शामिल करना है मनीषा, यही हमारे दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि हम रात में सीमित मात्रा में रोटी भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी एक अच्छा कह सकते हैं दोस्तों विकल्प है, और साथ ही आप मोटे अनाज भी शामिल करें, जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी। दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अगर सलाद की बात करें तो सलाद शरीर को फाइबर देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें दोस्तों आप खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर जैसे पदार्थ ले सकते हैं, ये काफी उपयोगी होते हैं। और रात में हम देखते हैं कि दही या छाछ का सेवन भी किया जा सकता है। दोस्तों, खास तौर पर गर्मियों में रात के भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में छाछ या दही पाचन में मदद कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन दोस्तों बहुत ठंडी चीजों से आपको बचना है। साथ ही सब्जियों का सूप हल्का और पौष्टिक होता है, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को आराम देगा और जल्दी पच भी जाएगा।
1: जी हाँ कशिश, ये तो हमारे श्रोता साथियों को आपने बताया कि रात के समय हमें कौन सा भोजन करना है। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि हमें रात के समय किन चीजों को खाने से बचना है, तो श्रोता साथियों हमें तला भुना भोजन नहीं करना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, और साथ ही दोस्तों हमें अधिक मिठाइयां भी नहीं खानी है, ठंडे पेय का सेवन नहीं करना है, और साथ ही श्रोता साथियों हमें अधिक मसालेदार भोजन भी नहीं करना है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों रात का खान पान हमारे स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। सही समय पर संतुलित और हल्का भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, नींद अच्छी आती है और अनेक बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में दोस्तों हमें तला भुना, जंक फूड और देर रात तक भोजन करने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि घर का ताजा और पौष्टिक भोजन ही सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार होता है। यदि हम अपने खान पान को सुधार ले श्रोता साथियों, तो जीवन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बन सकता है। ऐसे में आपसे यही कहना चाहेंगे कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। सही खान पान ही अच्छे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रात का खान पान हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम समय पर संतुलित और हल्का भोजन करते हैं साथियों, तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ भोजन न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्न रखता है। श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग स्वाद के पीछे भागने के बजाय स्वास्थ्य को महत्व दें। घर का ताजा भोजन, पौष्टिक भोजन अपनाकर स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। सही खान पान, अच्छी नींद, मजबूत पाचन और लंबी आयु श्रोता साथियों इसी का आधार है। इसीलिए श्रोता साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह रात के भोजन में सादगी, संतुलन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। स्वस्थ खान पान ही श्रोता साथियों स्वस्थ जीवन की कुंजी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ,
0: और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें यहाँ पर।
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाक रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर और स्वागत करती हूं श्रोता साथियों आप सभी का हमारे आज की विशेष कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो हमारा है वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायी कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं हर बार हर किसी चीज़ को लेकर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वर्तमान का हमारा चलन ही ऐसा हो गया है, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो कार्यक्रम सपनों की उड़ान में श्रोता साथियों हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकर आपको अंदर से आत्मविश्वास भी मिलता है और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों ऐसा ही एक नया विषय मैं कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति की, क्योंकि श्रोता साथियों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी सोच का एक अलग ही महत्व होता है। देखते हैं ना कि ऐसा कहा भी जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा तन होता है। तो श्रोता साथियों हमारे पूरे जीवन की जो गाड़ी है वो हमारी कह सकते हैं कि सोच पर ही टिकी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे साथियों कि सकारात्मक सोच क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो इसके कौन कौन से फायदे हमें होने वाले हैं। तो मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में साथियों, ढेर सारी बातें होंगी, गीत संगीत भी होंगे। तो श्रोता साथियों गीत संगीत से मुझे याद आया कि पहले मैं आपको शुरुआत में गीत संगीत सुनवा देती हूँ, फिर हम बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों इस गीत के साथ मनोरंजन करते हैं और फिर हम हमारी बात को फिर से जारी रखेंगे।

प्यारे श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति को लेकर। साथियों, जीवन में हम कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से जरूर गुजरते हैं जब हमें सब कुछ कठिन लगता है। देखते हैं कि कभी पढ़ाई का दबाव है, कभी काम की चिंता है, कभी भविष्य की अनिश्चितता। साथ ही साथियों, ऐसे कई कारण होते हैं जो मन को हमारे कमजोर कर देते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, और वह है हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों सकारात्मक सोच क्या है और हमारे जीवन को ये कैसे बदल सकती है इसको लेकर, और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। अगर साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सकारात्मक सोच होती क्या है, तो साथियों सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। साथियों, सकारात्मक सोच का असली अर्थ ये है कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को उम्मीद और समाधान के साथ कैसे जीवित रख सकते हैं, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में हम उम्मीद के साथ समाधान को कैसे खोजते हैं। श्रोता साथियों, क्योंकि जब इंसान सकारात्मक सोच रखता है श्रोता साथियों, तो वह हर समय को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। ऐसे तो साथियों कई लोग ये भी मानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हम देखें तो ये बात सत्य भी है, क्योंकि श्रोता साथियों हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो समस्याओं का सामना करना तो हमें सीखना ही होगा, क्योंकि श्रोता साथियों ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही समय पर ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास क्षमता नहीं है इसे करने की, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके विपरीत हम ये सोचें कि मैं कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी ढेर सारी बातें हैं साथियों, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता जाता है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, जैसा हमारा मन है वैसा हमारा तन है साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपने अंदर नकारात्मकता को भरते ही जाएंगे तो हमारा स्वभाव इससे बदल जाएगा। और देखेंगे श्रोता साथियों कि अगर हम हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेकर घूमते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में यही चलेगा कि इससे कुछ भी पूछो या इसके बारे में कुछ भी बात करो, ये हमारी बात को सहमत होगा ही नहीं, ये तो उल्टी बात ही करेगा। तो श्रोता साथियों, इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है साथियों जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगी, साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आगे भी श्रोता साथियों ढेर सारी बातें हम करेंगे कि सकारात्मक सोच के क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी हम मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, क्योंकि जब कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे हैं साथियों, तो मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

सुबह साथियों, हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हम जान रहे थे कि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं और गीत से पहले जैसा कि साथियों हमने जाना था कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जैसा कि जान पाए थे कि जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो जो असंभव कार्य भी है वो भी हमें संभव लगने लगते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है साथियों, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं इसके विपरीत देखें, हमारे अंदर नकारात्मक सोच है तो हमें हर चीज़ मुश्किल लगेगी। हम अगर संघर्ष कर रहे हैं साथियों तो उसमें भी हमें बार बार असफलता मिलेगी, और उस असफलता की वजह से श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा आ जाती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब भी मुझे यही कहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लोग तो बातें करेंगे। श्रोता साथियों, आपने एक बात भी सुनी होगी कि लोगों का काम है कहना, लेकिन श्रोता साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जिंदगी हमारी है, हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। हम नकारात्मक सोच लेकर घूमते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है, वहीं अगर हम सकारात्मक सोच को लेकर बैठे हैं, हमारे अंदर सकारात्मक सोच है श्रोता साथियों, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। आप हर काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपको नेगेटिविटी में भी श्रोता साथियों पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर अब यही बात करें कि सकारात्मक सोच के क्या लाभ होते हैं, तो साथियों सकारात्मक सोच हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आती है। सबसे पहला लाभ तो ये है श्रोता साथियों कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी क्षमता का एहसास होने लगता है, और हम देखते हैं श्रोता साथियों कि उस क्षमता की वजह से, उस आत्मविश्वास की वजह से हम अपने हर कार्य को ठीक तरीके से सही ढंग से कर पाते हैं। तो श्रोता साथियों कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को जगह देनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में श्रोता साथियों दो तरह के लोग मिलेंगे, सकारात्मक लोग भी और नकारात्मक लोग भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किसके गुणों को शामिल करते हैं। अगर आप श्रोता साथियों नकारात्मक लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों में रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटीज ही आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं श्रोता साथियों, तो आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि श्रोता साथियों आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही संगति बनानी चाहिए, क्योंकि यही साथियों हमारे जीवन को सुखद, खुशहाल और सफल बना सकता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सप्ताह के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हैं, यहाँ आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपड़े हाल हैं, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। हो भाई, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रहने का विषय है, समस्या से बचना नहीं बल्कि सामना करना है।
0: जी हाँ,
1: क्या पता वही समस्या हमारा समाधान खोज ले।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, जीवन का रास्ता कभी भी सीधा और सरल नहीं होता, ये हम सभी जानते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां आती है, परेशानियां आती है, असफलता आती है और चुनौतियां भी आती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है मनीषा जिसने अपने जीवन में समस्याओं का सामना नहीं किया हो। कभी आर्थिक कठिनाई से किया है, कभी मानसिक तनाव से किया है, कभी पढ़ाई का दबाव, कभी रिश्तों की उलझने। श्रोताओं, समस्या हर मोड़ पर हमारा इम्तिहान लेती है, लेकिन असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन समस्याओं से भागते हैं या उनका सामना करते हैं। जो लोग समस्याओं से डरकर पीछे हट जाते हैं मनीषा, वे जीवन में आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वहीं जो लोग साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं, वे न केवल अपनी राह बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है श्रोता साथियों कि वही व्यक्ति जो किसी समस्या में सबसे अधिक परेशान होता है, आगे चलकर उसी समस्या का सबसे बड़ा समाधान खोज लेता है। तो कहा भी क्या है मनीषा कि मुश्किलों से भागना हार है, लेकिन उनका सामना करना जीत की शुरुआत है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: seré tú.
1: वाह वाह तू किस बात से डरा है तू, है बोलता इतिहास की हर

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं समस्याओं से बचे नहीं उसका सामना करें, कौन जाने आप ही उसका समाधान खोज लें। जागृति जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन कभी भी एक समान नहीं रहता। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता, संघर्ष और उपलब्धियां एक साथ चलती रहती हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्याओं का सामना करता है। किसी के सामने आर्थिक कठिनाइयां होती है तो किसी के सामने पारिवारिक तनाव, किसी के सामने पढ़ाई या रोजगार की चुनौतियां होती हैं तो किसी के सामने मानसिक दबाव और अकेलापन। श्रोता साथियों, समस्याएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा हैं, उनके पूरी तरह से बच पाना हमारे लिए संभव नहीं है। पर जागृति जी, हम देखते हैं कि जीवन में असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम समस्याओं को किस दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग कठिनाइयों से डर जाते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग साहस के साथ उसका सामना करते हैं। श्रोता साथियों, जो लोग समस्याओं से डटकर सामना करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। जागृति जी, कई बार हम देखते हैं कि जिस समस्याओं से लोग घबराते हैं उसका समाधान भी नहीं कर पाते और वे पीछे रह जाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, कहा जाता है कि समस्याओं से भागिए मत, उसका सामना कीजिए, कौन जाने आप उसका समाधान कब खोज लें।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि समस्या शब्द सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है। हमें लगता है कि अब सब कुछ गलत हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि गहराई से देखा जाए श्रोता साथियों, तो समस्या वास्तव में एक अवसर होती है। यह हमें मजबूत बनाती है, सोचने की शक्ति देती है और हमारे भीतर छिपी क्षमताओं को बाहर लाती है।
0: जी हाँ,
1: जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार इंसान भी संघर्षों से गुजरकर महान बनता है। श्रोताओं, कहा गया है कि संघर्ष ही वो सीढ़ी होती है जो इंसान को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाती है। मनीषा, आज के समय में कई युवा साथी छोटी छोटी परेशानियों से घबरा जाते हैं। परीक्षा में कम अंक आ जाए, नौकरी ना मिले, किसी ने आलोचना कर दी या जीवन में असफलता मिल गई तो वे निराश हो जाते हैं। कुछ लोग तो कोशिश करना भी छोड़ देते हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर सफल व्यक्ति ने कठिन परिस्थिति का सामना किया है। यदि वे भी डर कर बैठ जाते तो शायद आज उनका नाम कोई नहीं जानता। जैसे कि थॉमस एडिसन की बात करें मनीषा, तो थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद भी बल्ब का आविष्कार किया।
0: जी हाँ,
1: जब उनसे पूछा गया कि वे इतनी बार असफल होकर भी निराश क्यों नहीं हुए, तो श्रोता साथी उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ हूँ, मैंने सिर्फ हजारों ऐसे तरीके खोज लिए हैं जो काम नहीं करते। ये सोच ही उन्हें महान बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है कि हार मानने वाले रास्ते बदलते हैं, डटे रहने वाले इतिहास बदलते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज समाज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो कठिन परिस्थितियों से डरे नहीं,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास के साथ समाधान खोजने का प्रयास करें। यही सोच व्यक्ति को मजबूत बनाती है और समाज को भी आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही हम देखते हैं कि बहुत से लोग समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे इन परिस्थितियों से दूर भागेंगी तो समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी।
1: जी हाँ,
0: लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि समस्याओं से भागने पर समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि हमारे लिए और बड़ी हो जाती हैं। जैसे यदि किसी विद्यार्थी को पढ़ाई से कठिनाइयां होती हैं और पढ़ाई से दूर रहने लगे जागृति जी, तो उसका डर और भी बढ़ जाता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक कठिनाइयों से घबराकर प्रयास छोड़ दे तो उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। इसी प्रकार साथियों, रिश्तों में आई गलत फहमियों से बचने के बजाय बातचीत करके समाधान निकालने की आवश्यकता है हमारे लिए।
1: बिल्कुल,
0: समस्याओं से भागना हमारे लिए कमजोरी बन सकता है। इससे आत्मविश्वास हमारा कम होता है और हमारा मन ही वो भी डर के साथ जीता है। धीरे धीरे श्रोता साथियों, व्यक्ति हर छोटी चुनौतियों से घबराने लगता है। इसके विपरीत जागृति जी, यदि हम साहस के साथ समस्याओं का सामना करते हैं तो हमें अनुभव मिलता है और समय बढ़ता है और हमारा आत्मविश्वास है वो भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, जैसे कि समस्या से भागने का सबसे बड़ा नुकसान ये है मनीषा, कि वो समस्या और बड़ी हो जाती है। जैसे यदि किसी छात्र को पढ़ाई कठिन लगती है और वो पढ़ाई से दूर भागने लगे तो धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जाता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं, यदि वो साहस के साथ पढ़ाई को समझने की कोशिश करेगा, शिक्षकों से सहायता लेगा और लगातार अभ्यास करेगा, तो वही विषय आसान लगने लगते हैं। कहा भी गया है कि डर से भागेंगे तो डर पीछा करेगा, सामना करेंगे तो डर भाग जाएगा। इसलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि जीवन में आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। जब इंसान को खुद पर भरोसा होता है तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान खोज सकता है। कई बार हमें लगता है मनीषा कि हम अकेले हैं और कोई हमारी मदद नहीं करेगा, लेकिन सच ये है श्रोता साथियों कि जब हम खुद अपने लिए खड़े होते हैं तब पूरी दुनिया हमारा साथ देती है। हम एक और उदाहरण के तौर पर आपको बताना चाहेंगे श्रोता साथियों कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन भी संघर्षों से भरा था, जैसा कि हर कार्यक्रम के माध्यम से हम इनका उदाहरण देते हैं। जैसे कि आपको बताते हैं कि वो गरीब परिवार में जन्म लिया था उन्होंने, उसके बावजूद भी उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी। उन्होंने हर समस्या का सामना ऐसे किया कि वो आगे चलकर भारत के महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने।
0: बिल्कुल,
1: यदि वे गरीबी और परेशानी से डर जाते हैं मनीषा तो शायद वे कभी मिसाइल मैन नहीं बन पाते। इसलिए श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि कठिनाइयां इंसान को रोकने नहीं बल्कि उसे तराशने आती है। बस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उन कठिनाइयों का सामना किस तरह से करते हैं।
0: जी हां जागृति जी, इसी के साथ हम बात करें कि समस्या हमारे जीवन को मजबूत कैसे बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है उसी प्रकार मनुष्य कठिनाइयों से गुजरकर मजबूत बनता है। बिना संघर्षों के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता साथियों।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में आने वाली समस्याएं हमें बहुत कुछ सिखाती है। वे हमें धैर्य रखना सिखाती है, मेहनत करना सिखाती है और परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना सिखाती है।
1: बिल्कुल,
0: यदि जीवन में कभी कभी कठिनाइयां न आए जागृति जी तो व्यक्ति अपनी जिंदगी में आलसी बन जाता है और समस्याओं का सामना करना भी भूल जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि किसान को अच्छी फसल के लिए धूप, बारिश और मेहनत कसरत करना पड़ता है। एक खिलाड़ी को जीत हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास और असफलताओं का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार हर सफल व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करते हैं वे। समस्या हमें गिराने नहीं श्रोता साथियों बल्कि हमें संभालने और हमें सिखाने के लिए आती है। वे हमें यह एहसास कराती है कि हम जितना सोचेंगे उससे अधिक हम मजबूत बनेंगे।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो बातें चल रही है कि समस्या से बचना नहीं बल्कि सामना करना है, क्या पता वही समस्या हमारी खोज बन जाए। तो ये बातें ऐसे ही निरंतर हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी, समस्या से हमें बचना नहीं है बल्कि सामना करना है, क्या पता हम ही उस समस्या का समाधान खोज लें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने गीत से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताया था, यही आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि समस्या हमें नई बातें सिखाती है।
1: जी हाँ,
0: जीवन में कभी कठिनाइयां न आए तो इंसान कभी परिपक्व नहीं बन सकता। मनीषा, एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कई बार गिरता है, यदि वो गिरने से डर जाएगा तो वो कभी चलना भी नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार जीवन में भी गिरना और संभलना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों। गिरना कमजोरी नहीं बल्कि गिरकर उठना असली ताकत है।
1: जी हाँ,
0: आज हम देखते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं उनमें से अधिकांश किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए किए गए थे। इंसान ने अंधेरे की समस्या देखी तो बिजली बनाई गई, दूरी की समस्या देखी तो वाहन बनाए गए, बीमारी की समस्या देखी गई तो दवाइयां बनाई गई।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि श्रोताओं, हर समस्या अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है।
1: जी हाँ,
0: कहा गया है मनीषा कि हर समस्या अपने भीतर एक नया समाधान छिपाए बैठी है, इसलिए हमें उस समाधान को खोजना है। और कहा भी गया है मनीषा कि ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका कोई समाधान नहीं होता, बस यही है कि हम डर जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन श्रोता साथियों, जो समस्या अगर पैदा हुई है उसका समाधान जरूर मिलेगा, और समाधान नहीं है तो वो कोई समस्या हो ही नहीं सकती।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हर समस्या अपने साथ समाधान भी लाती है।
0: बिल्कुल,
1: यह संसार ऐसा बना है जहाँ हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। कई बार समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता है साथियों, लेकिन धैर्य और प्रयास से रास्ता निकल ही आता है।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति समस्याओं को समझने की कोशिश करता है तभी वह उसके समाधान तक पहुंच पाता है। यदि हम शुरुआत में ही हार मान ली तो रास्ता कभी हमारे लिए हमेशा के लिए कठिन बन जाएगा और हम उस समस्या का समाधान नहीं खोज पाएंगे। लेकिन यदि हम सोचें, समझें, दूसरों से सीखें और लगातार प्रयास करें तो हमें समाधान अवश्य मिलता है।
0: जी हाँ
1: जागृति जी, हम देखते हैं कि आज विज्ञान, तकनीकी और समाज ने जितनी बड़ी खोज हुई है वे किसी समस्या के समाधान की तलाश का परिणाम है।
0: बिल्कुल,
1: लोगों ने कठिनाइयों को चुनौती की तरह लिया है और नए रास्ते खोजे हैं। इसीलिए जब भी जीवन में समस्या आए साथियों, तो घबराने की बजाय यह सोचना चाहिए कि शायद परिस्थितियां हमें कुछ नया सिखाने की कोशिश कर रही हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये वही समय इंसान की असली परीक्षा होती है। जो व्यक्ति उस कठिन समय में भी धैर्य रखता है, साहस बनाए रखता है, जैसा कि आपने कहा था, वही आगे चलकर सफल भी होता है। श्रोताओ, नदी के रास्ते में बड़े बड़े पत्थर आते हैं, ये हमने देखा है, फिर भी वो रुकती नहीं है, बहती रहती है, धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनाती है। वैसे श्रोता साथियों, हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी समस्या आती रहती है, लेकिन बस उन पत्थरों को पार करते हुए हमें आगे बढ़ना है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि कहा गया है कि रुकावटें रास्ता रोकने नहीं बल्कि नया रास्ता बनाने के लिए आती है। इसलिए आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समस्या का सामना करने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। यदि हम हर कठिनाई को बोझ समझेंगे तो कभी आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हम ये सोच ले मनीषा कि यह कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आई है तो हमारा नजरिया बदल जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: कहा गया है कि सकारात्मक सोच इंसान को अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी दिखाती है। तो श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि अपनी सोच को बदलो, संघर्ष भी अवसर दिखाई देने लगेगा। यानी कि श्रोताओं, अगर हमारी सोच बदल जाएगी तो हम जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष को भी हम खुशी खुशी कर पाएंगे, और हमारी सोच अगर नकारात्मकता की तरह रही तो हम उस संघर्ष को जीवन में कभी पार ही नहीं कर पाएंगे।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि हमारा आत्मविश्वास है वो समस्या का सबसे बड़ा हथियार है।
0: बिल्कुल,
1: किसी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे लिए वो है आत्मविश्वास। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास हो तो वो बड़ी समस्याओं और बड़ी चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आत्मविश्वास का अर्थ श्रोता साथियों यह नहीं कि हम हर चीज का ज्ञान उसके अर्थ से निकालें। हमें यह भरोसा होना चाहिए कि हम किससे सीख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसके लिए रास्ता निकाल सकते हैं। जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं जागृति जी, वे असफल होने पर भी टूटते नहीं है, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और फिर से प्रयास करते हैं। यही आदत उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास और मेहनत करती यही आदर्श श्रोता साथियों उसे आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देती है।
0: बिल्कुल,
1: जब व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का सामना करता है तो उसका मन शांत रहता है। शांत मन से सोचने पर सही निर्णय लेने हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसीलिए जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि समाज में भी कई सारी समस्याएं जैसे कि गरीबी हो गई, बेरोजगारी हो गई, प्रदूषण हो गया, अशिक्षा हो गई, भेदभाव, यदि हर व्यक्ति सोचकर बैठ जाए कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है तो समाज कभी नहीं बदलेगा। बदलाव तब आता है श्रोताओं जब कोई एक व्यक्ति समस्या का सामना करने का साहस करता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी की बात करें मनीषा, तो महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के अत्याचारों से डरकर हार नहीं मानी, उन्होंने संघर्ष किया और पूरे देश को आजादी की राह दिखाई। युवाओं के लिए ये विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है श्रोता साथी, क्योंकि हम देखते हैं कि युवा हमारे देश के भविष्य होते हैं, रीढ़ की हड्डी है। यदि युवा चुनौतियों से डरने लगेंगे तो देश का विकास रुक जाएगा। श्रोताओं, हमारे युवा साथियों को चाहिए कि वे असफलता से घबराए नहीं बल्कि उसे सीख लें। हर असफलता सफलता की ओर बढ़ने का एक अनुभव होती है श्रोताओं, इसीलिए आप कहना चाहेंगे कि असफलता अंत नहीं सफलता की तैयारी है।
1: जी हाँ,
0: कभी कभी समस्या इतनी बड़ी लगने लगती है मनीषा कि इंसान टूटने लगता है। ऐसे समय में परिवार, मित्र, गुरु का साथ बहुत जरूरी हो जाता है। अपने मन की बात साझा करने से मन हल्का होता है श्रोताओं और नई ऊर्जा मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी है खुद को कमजोर न समझना, क्योंकि साहस वो दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी रोशनी देता है। हमें समझना होगा कि भागने से कभी समाधान नहीं मिलता। यदि घर में आग लग जाए और कोई व्यक्ति डर कर भाग जाए मनीषा, तो आग और फैल जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन यदि साहस के साथ मिलकर उसे बुझाने की कोशिश की जाए श्रोताओं, तो नुकसान कम हो सकता है।
1: जी हाँ,
0: सिद्धांत जीवन की हर समस्या पर भी लागू होता है।
1: जी बिल्कुल जागृति।

0: लेकिन जब वे शांत होकर तैयारी करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना।
1: बिल्कुल।
0: जब हम धीरे धीरे कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हमारे अंदर का डर है वो कम हो जाता है। जीवन में साहस का अर्थ है श्रोता साथियों डर का न होना, बल्कि डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाकर हमें आगे बढ़ना।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि मनीषा, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चली रही हैं, तो ये बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद में हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों हम बातें कर रही थी, हमें समस्याओं से बचना नहीं है,
1: बिल्कुल
0: उसका सामना करना है, क्या पता कि हम उसका समाधान हम खुद खोज लें। जागृति जी, यहीं अगर हम बात करें कि समस्याओं का सामना हम करते हैं तो हमारा अनुभव है वो भी बढ़ता है। हम देखते हैं कि अनुभव जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। किताबें हमें ज्ञान देती हैं लेकिन जीवन की कठिनाइयां हमें अनुभव देती हैं। हर व्यक्ति किसी समस्याओं से गुजरता है तो उसे भविष्य के लिए अधिक समझदार बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: अगली बार श्रोता साथियों यदि वैसी ही परिस्थितियां आए तो हमें घबराना नहीं है, अपने तरीके से उसे सुलझाने की कोशिश करनी है और हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। जागृति जी, हम देखते हैं कि एक व्यापारी को नुकसान होने पर व्यापार की नई बातें वो सीखता है। एक किसान की फसल खराब हो जाती है तो वो खेती से संबंधित कई जानकारी और कई तरीके सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: एक विद्यार्थी अगर असफल हो जाता है तो वो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करता है।
1: जी हाँ।
0: इसी प्रकार श्रोता साथियों, समस्या केवल दुख नहीं देती बल्कि सीख भी देती है। यही सीख हमारे भविष्य में सफल होने का आधार होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, हमें बच्चों को भी बचपन से यही शिक्षा देनी होगी कि असफलता से डरना नहीं। यदि बच्चा हर छोटी समस्या पर हार मान लेगा तो भविष्य में वो बड़े संघर्षों का सामना नहीं कर पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: माता पिता और शिक्षकों का कर्तव्य है श्रोताओं कि वे बच्चों में आत्मविश्वास और धैर्य की भावना विकसित करें। बचपन में सीखा साहस जीवन भर शक्ति बन जाता है श्रोताओं।
0: जी हाँ।
1: और प्रकृति भी हमें यही संदेश देती है कि बीज जब मिट्टी के अंदर दबता है तभी पौधा बनता है। यदि वो अंधेरे और दबाव से डर जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा।
0: बिल्कुल।
1: उसी प्रकार इंसान भी कठिन परिस्थितियों में ही सबसे अधिक विकसित होता है। कहा भी गया है कि दबाव ही कोयले को हीरा बनाता है श्रोताओं।
0: जी हाँ।
1: तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। हर इंसान में समस्याओं से लड़ने की क्षमता होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है मनीषा कि कुछ लोग उस शक्ति को पहचान लेते हैं और कुछ लोग डर के कारण हार मान लेते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम आपसे यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समस्याओं से भागना कभी समाधान हो ही नहीं सकता। जीवन का असली आनंद तभी है जब हम कठिनाइयों का सामना करें, उनसे सीखें और आगे बढ़े। कौन जानता है कि जिस समस्या से आज हम परेशान हैं कल उसी का समाधान खोजकर हम हजारों लोगों की प्रेरणा बन जाएं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोताओं कहना चाहेंगे कि डरिए मत, रुकिए मत, हार मत मानिए, हर चुनौतियों को स्वीकार कीजिए।
0: जी हाँ।
1: और विश्वास रखिए कि हमारे भीतर हर मुश्किल को हराने की शक्ति मौजूद है, क्योंकि समस्याएं जीवन को रोकने नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने आती है।
0: जी हाँ।
1: जो इंसान चुनौतियों से लड़ना सीख जाता है मनीषा, वो जीवन में कभी पराजित नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए हमेशा याद रखिए, समस्या से बचो मत, उसका समाधान करो, क्या पता कल दुनिया हमारे समाधान पर गर्व करे।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि व्यक्ति की सोच सकारात्मक है तो वो रास्ता निकाल ही सकता है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को टूटने से बचाती है साथियों। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, इसका अर्थ यह है कि कठिन परिस्थितियों में भी हम उम्मीद बनाए रखें। जब मन में उम्मीद होती है श्रोता साथियों तभी हम प्रयास करते हैं। नकारात्मक सोच व्यक्ति को निराश कर देती है। उसी तरह हर जगह हार दिखाई देने लगती है साथियों, इसके विपरीत अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारा जीवन भी अच्छा होता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी मिलती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे लिए नए अवसर वो भी खुल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जो लोग हर परिस्थिति में सीख और संभावनाओं को खोजते हैं जागृति जी, वे जीवन में अधिक सफल होते हैं।
1: बिल्कुल। और जैसे कि मनीषा हम बात कर रहे हैं, समस्या से हमें भागना नहीं है, उसका सामना करना है, क्या पता यही समस्या हमारे समाधान को खोज ले, तो इसी से जुड़ी एक कहानी हमारे श्रोता साथियों को हम सुनाना चाहेंगे।
0: जी।
1: कि श्रोता साथी, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घरों में काम करके परिवार चलाती थी।
0: जी हाँ।
1: गांव में बिजली की बहुत सारी समस्या थी। रात होते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। बच्चे ठीक से पढ़ भी नहीं पाते थे। किसान रात में काम नहीं कर पाते थे और कई बार बीमार लोगों को समय पर मदद भी नहीं मिलती थी मनीषा।
0: बिल्कुल।
1: अर्जुन बचपन से ही ये सब देखता आ रहा था। जब वो पढ़ने बैठता तो मिट्टी के तेल वाला छोटा दीपक ही उसका सहारा बन जाता। कई बार दीपक बुझ जाता और वह अंधेरे में बैठकर रोने लगता। उसके दोस्त कहते हैं, हम गरीब हैं, हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी।
0: जी हाँ।
1: लेकिन अर्जुन के मन में हमेशा एक सवाल उठता था, क्या सच में इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? एक दिन तेज आंधी आई श्रोता और पूरे गांव की बिजली कई दिनों तक चली गई।
0: बिल्कुल।
1: लोग परेशान हो गए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, रात में डर का माहौल होने लगा। गांव के लोग सिर्फ शिकायत कर रहे थे, कोई कहता सरकार कुछ नहीं करती, कोई कहता किस्मत खराब है, लेकिन अर्जुन चुप था। वो सोच रहा था कि आखिर इस अंधेरे को खत्म कैसे किया जाए। उसने हार नहीं मानी। स्कूल की पुरानी किताबों में उसने सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा
0: जी।
1: वो रोज कई किलोमीटर दूर लाइब्रेरी जाता और घंटों बैठकर सीखता कि सूरज की रोशनी से बिजली कैसे बनाई जा सकती है। लोग उसका मजाक उड़ाते, कुछ कहते हैं एक गरीब लड़का दुनिया बदल देगा क्या, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने कबाड़ से पुराने तार इकट्ठे किए, टूटे हुए शीशे उठाए और छोटे छोटे प्रयोग शुरू कर दिए। कई बार उसके प्रयोग असफल भी हुए श्रोताओं। कई बार तार जो थे वो जल गए, कभी मशीन टूट गई, कई रातें वो रोया भी। उसे लगा कि शायद वो कभी सफल ही नहीं होगा।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन हर बार उसकी माँ की एक बात याद आती, बेटा समस्या से डरने वाले लोग सिर्फ शिकायत करते हैं और समस्या से लड़ने वाले लोग इतिहास बनाते हैं। यही शब्द अर्जुन की ताकत बन गए मनीषा
0: जी।
1: एक दिन महीनों की मेहनत के बाद उसने एक छोटा सोलर लैंप बना लिया। जब वो पहली बार जला तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके उस छोटे से उस दीपक की रोशनी ने सिर्फ उसका कमरा नहीं बल्कि उसके सपनों को भी रोशन कर दिया था श्रोता
0: जी। हाँ।
1: धीरे धीरे उसने और लैंप बनाए, गांव के बच्चों को मुफ्त में दिए ताकि वे पढ़ सके, किसानों को दिए ताकि वे रात में भी काम कर सके। अब पूरा गांव अर्जुन की तारीफ करने लगा। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे श्रोताओं, वही लोग अब उस पर गर्व कर रहे थे। कुछ साल बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और गांवों के लिए सस्ती और सौर ऊर्जा मशीनें बनाई। उसका काम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन उसे मंच पर सम्मानित करते हुए एक अधिकारी ने पूछा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया श्रोता और बोला, अगर मैं अपनी गरीबी और अंधेरे से डर कर बैठ जाता तो शायद आज भी मेरा गांव अंधेरे में होता।
0: जी हाँ।
1: मैंने समस्या से भागने के बजाय उसका सामना किया और वही समस्या मेरी ताकत बन गई।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। समस्या हमें रोकने आती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कह रहे हैं कि समस्या हमें रोकने आती है बल्कि हमें हमारी ताकत दिखाने आती है। जब इंसान मुश्किलों से लड़ना सीख जाता है मनीषा, तब कोई भी तूफान उसे हरा नहीं सकता। हर अंधेरी रात के पीछे एक नई सुबह छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: हर संघर्ष के पीछे सफलता का रास्ता होता है। जरूरत सिर्फ हिम्मत की होती है। इसीलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए तो डरिए मत, भागिए मत। खुद से कहिए कि मैं हारने नहीं सीखने आया हूँ, मैं रुकने नहीं आगे बढ़ने आया हूँ।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि कौन जानता है कि जिस समस्या से आज हम परेशान हैं, कल उसी समस्या का समाधान खोजकर हम हजारों लोगों की उम्मीद बन जाएंगे।
0: जी बिल्कुल जागृति जी। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से बातें चल ही रही है और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। और हमारी बातें चल रही थी बहुत ही अच्छी, यही हमारी बातों को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कहा गया है कि मुश्किलें रास्ता रोकने नहीं आती, वे इंसान की ताकत जगाने आती है।
1: बिल्कुल,
0: जो डरकर भाग जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो डरकर सामना करते हैं वही एक दिन दुनिया बदल जाते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि जिंदगी कभी भी बिना संघर्ष के महान नहीं बनती। जिस इंसान ने दर्द नहीं देखा, कठिनाइयों का सामना नहीं किया, वो अपनी असली ताकत को कभी पहचान नहीं सकता। समस्या जीवन की दुश्मन नहीं होती, वे तो शिक्षक होती है जो हमें मजबूत बनाना सिखाती है।
1: बिल्कुल।
0: जब जब जिंदगी हमें गिराती है मनीषा, तब तक वो हमें उठना भी सिखाती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बहुत से लोग एक असफलता के बाद प्रयास करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतिहास गवाह है कि कई महान लोगों ने बार बार असफल होने के बाद भी सफलता प्राप्त की है।
0: बिल्कुल।
1: असफलता हमें बताती है कि कहां हमें सुधार करना है। यदि हम अपनी गलतियों को समझ ले तो अगला प्रयास हमारे लिए और बेहतर हो सकता है।
0: जी हाँ।
1: जीवन में गिरना श्रोता साथियों गलत नहीं है, लेकिन गिर कर उठने की कोशिश न करना गलत है। जो व्यक्ति असफलताओं के बाद फिर से खड़ा हो जाता है वही अंत में सफल होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, असफलताओं से डरने के बजाय सीखने की कोशिश करें। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि कई बार व्यक्ति अकेले समस्याओं का सामना करते करते थक जाता है। ऐसे समय में परिवार, मित्र और समाज का सहयोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब कोई हमारा मनोबल बढ़ाता है तो हमें समझ आता है और हमें सलाह भी मिलती है, तो हम कठिन परिस्थितियों का सामना श्रोता साथियों आसानी से कर पाते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे संबंध भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जागृति जी, हम देखते हैं कि दूसरों की समस्याओं को भी हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम किसी व्यक्ति की परेशानी को समझते हैं, उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे ऊपर भरोसा कर पाता है और हमारा साथ देता है, और एक दूसरे की मदद करके भी हम समस्याओं का समाधान आसानी से खोज पाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि अगर नदी रास्ते के पत्थरों से डर जाती तो क्या वो कभी समुद्र तक पहुंच पाती? अगर छोटा सा बीज मिट्टी के अंधेरों से घबरा जाता तो क्या वो कभी विशाल पेड़ बन पाता? नहीं, क्योंकि प्रकृति का नियम है श्रोताओं के संघर्ष के बिना विकास नहीं होता।
1: जी हाँ।
0: इसी तरह इंसान भी तब तक अधूरा रहता है जब तक वो कठिनाइयों का सामना करना नहीं सीखता। जो लोग समस्याओं से भागते हैं वे कुछ समय के लिए खुद को बचा तो लेते हैं, लेकिन जिंदगी भर डर के साए में जीते रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वहीं जो लोग मुश्किलों का सामना करते हैं वे धीरे धीरे इतने मजबूत बन जाते हैं कि बड़ी से बड़ी परेशानी भी उनके सामने छोटी लगने लगती है।
1: जी हाँ।
0: हो सकता है श्रोता साथियों कि आज हमारी जिंदगी में अंधेरा हो सकता है हालात हमारे खिलाफ हो, लोग हमारा साथ छोड़ रहे हो, मेहनत का फल नहीं मिल रहा हो, सपने टूटने लगे हो, लेकिन याद रखिए सबसे चमकीला सूरज भी सबसे काली रात के बाद ही निकलता है।
1: जी हाँ।
0: खुद पर भरोसा रखिए, हमारी आज की लड़ाई हो हमारे कल की पहचान बनेगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम पीछे मुड़कर अपनी संघर्ष भरी राह को देखेंगे और गर्व से कहेंगे कि अगर उस समय मैं डरकर हार मान लेती या मान लेता तो आज मैं ये मुकाम कभी हासिल नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आए श्रोता साथियों, कभी हार मत मानिए, क्योंकि कई बार भगवान इंसान को समस्या इसलिए देता है मनीषा, ताकि वो दुनिया के लिए समाधान बन सके।
1: बिल्कुल।
0: कहा गया है कि जब रास्ते कठिन लगे तो समझ लेना की मंजिलें बड़ी खूबसूरत है। जब दुनिया हमें कमजोर कहे तो अपने हौसलों को और मजबूत कर लेना, क्योंकि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जो हालात से लड़ने का साहस रखते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युवा अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। पढ़ाई का दबाव, रोजगार की चिंता, प्रतियोगिता और भविष्य की अचिंताएं उसके सामने समस्याओं के रूप में आकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन युवाओं को यह समझना होगा कि समस्याएं जीवन का अंत नहीं होती, और हर चुनौती उन्हें भीतर से मजबूत बनाने आती है। अगर युवा है वो धैर्य रखे, मेहनत करे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करे, तो वे न केवल अपने समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं बल्कि समाज के लिए भी नई दिशा दे सकते हैं। युवाओं में ऊर्जा, नई सोच, बदलाव की क्षमता होती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि वे कठिनाइयों से डरने के बजाय उसका सामना करें।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि मनीषा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की कि डर का हमें किस तरह से सामना करना है और किस तरह से उसका ध्यान उसके लिए समाधान खोजने हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो आप देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा हम जरूर लेंगे, पर हमारे श्रोता साथियों को हम पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार साथी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

कार्यक्रम कार्यक्रम आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इस बीच आप अपनी फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस फ़ोन नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। तो पहली फरमाइश आ चुकी है साथियों हमारे बीच महाराष्ट्र से है। फिल्म का नाम है जैसी करनी वैसी बरनी। गीत के बोले जो बोएगा वही पाएगा। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे संतोष जी, सुनैना जी, सुकन्या जी, सविता जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। मंजुका टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और संतना MP से उमक मलिक, आकाश मलिक, माही मलिक जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदवी शाह, पल्लवी शाह, प्रकाश शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम बढ़ते हैं फिर से हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से है। गीत के बोले धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चार है गोविंद वैष्णव दिव्या, सुमन कोमल परी, कृतिका रेशमी डांगी जी। और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को जिला खरगोना मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलक चंद्र वर्मा, श्रीमती भगवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समराज, आर्यन बेबी, आरोही, एशिका, अंजलि, सविता वर्मा जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों पंटापुर सिटी से प्रशांत जी, सुनीता जी, यशराज जी, ऋषि जी, कृष्णा जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर और आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच जिला हरियाणा से ही। फिल्म का नाम है जानवर, गीत के बोले तुझको ना देखूं तो। साथियों, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बंगेल, रुक्मणी बंगेल, साहिल बंगेल जी, और इस गीत के अनुरोध करता है दोस्तों। नवाशहर पंजाब से ही गंगदीप थांडी, तृप्ता कुमारी जी, डॉक्टर प्रियंका जी, डॉक्टर प्रशांत जी, डॉक्टर वामिका जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। रायगढ़ से विश्व शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, उत्कर्ष चौहान जी। तो आइए दोस्तों, आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच बागपत से ही। फिल्म का नाम है दिल, गीत के बोले मुझे नींद ना आई। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे अब्दुल्ला संता अब्बासी जी, और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में, पंटोपुर से जाकिर मुलानी, सोमिया, सुबान, समीर, सलमान, मुमताज, दिलशाद, नसीर मुलानी जी। और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों जिला भागपत से आसिर अली खान, मोमित नाच, मुस्कान जी, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों, अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच महाराष्ट्र से ही। फिल्म का नाम है हसीना मान जाएगी। गीत के बोले दोस्तों, बेखुदी में सनम उठ गए जो। इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे बंटू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला देवीदास जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। मस्तानापुरा से अंता भगत, अरुणा भगत, चैतन्य भगत, सुलक्षणा भगत जी, और इस गीत की अनुरोध करता है साथियों। सुकरी कला से है उत्तम सिंह जंगल, मोर सिंह जंगल, अनिल कुमार, अजित कुमार जी। कोका बिलाई से है उत्तम सिंह जंगल, मोर सिंह जंगल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगल और नंदन जंगल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे ऐसे गीत के साथ में। जिला बागपत से जगमोहन श्री प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी जी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नेतुन जी, प्यारे पोती भुवनेश्वरी जी। दिल्ली से रामनाथ प्रजापत, श्रीमती सोनम देवी जी। तो आइए दोस्तों, अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपने दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से ही। फिल्म का नाम है मकसद, गीत के बोले ओए होए गर्मी है कहाँ। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मनु शनु बब्बर, मनु काना ठाकुर, हरिप्रिया जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। गज ढुंडवारा से ही शमशुल कमर आई, शाहिर फतिमा, आनंद खान, फेनान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से रुक करते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो साथियों अगली फरमाइश आ चुकी हमारे बीच डबकी रोड अकलाव से ही। फिल्म का नाम है राजा, गीत के बोले झुकी झुकी नजर तेरी। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे सुशीला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव मधुरकर, आरव और अर्पिता जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को, खड़वा मध्य प्रदेश से बेबी शालिमा डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जकीरा जी, बेबी आशा जी खत्री जी, जिला धाईपुर से मूषा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जकीरा खत्री जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, मुरली नीरा वर्मा जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच उत्तर प्रदेश से ही, फिल्म का नाम है दिलवाले। गीत के बोले मौका मिलेगा तो हम तो साथियों इस गीत के साथ चुनना चाह रहे उदय पाल, जय हिंद पाल, दिशा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बंगेल और भी दोस्त सुनना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत को। जिला हरियाणा से ही जसवीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरुपति लवप्रति सिंह, कमरजीत जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से रामकुमार जी, चंद्रकला जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों हमारे इसी गीत के साथ में। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराजा कृत्यपुरी गोस्वामी, लक्ष्मणी देवी जी, जोगेशपुरी टिंकल टिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा जी और भी साथी सुनना चाह रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत्ता शिवाश, श्रीमती करुणा शिवाश, आयुष शिवाश, विवेक शिवाश, बेबी आयु शिवाश। बेलतरा छत्तीसगढ़ से मोहन सिराज, अनिता राज, सुमित, सोमू, मानस राज जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र जी, नोखेलाल जी और भी साथी सुनना चाह रहे हैं दोस्तों। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम जी, सचिन जी, सतीश जी, योगेश जी और इस गीत की अनुरोध करता है। कलानूर से नरेंद्र शर्मा, किन्नर शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्म छिपा, कपिल, पूजा, परिहार जी। तो आइए दोस्तों अब सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा आपके अपनी दोस्त रीना पटेल के साथ में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों के साथ।

दोस्तों इस प्यारे से गीत के साथ में हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। तो दोस्तों अगली फरमाइश आ चुकी है हमारे बीच हरिद्वार से ही। फिल्म का नाम है खलनायक, गीत के बोले पालकी में होके सवार चली रही। साथियों इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेराज जहां और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं साथियों हमारे इसी गीत को, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी करवी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र से पीए नवाकर, निर्मल नवाकर, विशाल नवाकर, मलकापुर से नारायण इगले, राजकुमार जी, आशीष मोहेंकर जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद शेख जी, गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सभ्या मुजावर, मिखलाई मुजावर, जैन मुजावर जी और भी दोस्त सुनना चाह रहे हैं। दोस्तों कुमार गली कोलगांव से पांडू चंदन, उषमा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रवेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुमार जी और भी दोस्त हैं। राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी जी, अमरजीत जी, सुंदरलाल जी, योगेश कुमार जी, दीपक कुमार जी, पूजा कुमारी जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे दोस्तों। राजस्थान से अमित चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रदीप चौहान जी और इस गीत की अनुरोध करता है दोस्तों। महाराष्ट्र से ही नंदकिशोर घाटे, संगीता जी, साक्षी जी, महेश जी और भी साथी सुनना चाह रहे दोस्तों। पेथोर से विजय अंबाडकर, सुनीता जी, अक्षय जी, राधिका जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं। बिहार कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीर्वाद, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना जी। तो आइए दोस्तों आप सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहेगा साथियों आपके अपने फरमाइश के गीतों को।

दोस्तों, जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता रीना पटेल के साथ में, अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पटेल नगर मालोट से। फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, गीत के बोल हैं जाने क्यों लोग मोहब्बत। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है डॉक्टर रमेश कुमार झंझोरिया, गीता रानी झंझोरिया, गंदीप झंझोरिया, अर्जु झंझोरिया जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापाजी नानक चंद मल्होत्रा। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कुनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पुणे से पंकज वाड़ोदी, आर्या प्रियंका, बेटी जी वाड़ोदी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेटर्न से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनिता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रहे सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता और संगीता जी जाधव। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जैन मंदिर गली कुरावली से साइद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नोरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी लता जी की आवाज में हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जनकपुरी सहारनपुर से। फिल्म का नाम है जोनी मेरा नाम, गीत के बोल ही पल भर के लिए। इस गीत की फरमाइश करता है जोन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलीजी डिकेस्ट्रो। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं जरूर वरूर। महाराष्ट्र से बाबा साहेब वाड़ोदी, मीनाक्षी चरपी, रजनी कानीरी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरीगेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। गजडू द्वारा से जुड़ना चाह रहे हैं यासिन हाशमी, नवजा बेगम जी, तौसीफ जी, तोइनूर जी और कलीम अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं चचेरी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। बिहार कॉलोनी दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पन्नूजी वडतकर। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अंबाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है फांसी, गीत की बोल है जब आती होगी याद मेरी। इस गीत की फरमाइश करता है रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर जी, प्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरशब्द राहुल, गुरकीरत जी और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे। झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बीबी चाहत जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सुप्रील जी धाड़ी। इस गीत के अनुरोध करता है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निदिशा जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आती होगी याद मेरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मिलन, गीत के बोल हैं हम तुम युग युग से। इस गीत की फरमाइश करता है रुपेश संघई, महेश संघई, ब्रजेश संघई, प्रतेश संघई और संघई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी और अन्नू जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही है मलियाना सरधाना मेरठ से। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं। आदि जैन, अंश जैन, भव्यजी जैन उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहेनी, ऋतिक बलवीर सिंह जी। राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेबी, आराध्या जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाव्या कुमारी, निवेश जी कुमार, निमित जी। मुरादाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरजार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट, अंकित जी कांगड़ा। धनोरी तेलीवाला से जुड़ रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। गंजूडवारा उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं देवशंकर, अजय देव, तुषार देव और बेबी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुंगा सापुर से मोहम्मद जाकिर जी मसूरी, करुण निशा, साबित मोहम्मद, पलक लुबिना। ग्वालियर से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश खुराना, किरण खुराना, लव्या आरव, मेघा और पप्पी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांभले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। सलार पलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, केसरुद्दीन जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवापारा से श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता और श्रीमती अंकुश राघव जी। बलिया से जुड़ना चाह रहे हैं ओम प्रकाश रोय, श्रीमती उषा रोय, अमित कुमार रोय, हैप्पी रोय। गांजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं प्रतीक रोय, श्रीमती रोशनी रोय, प्रांजल श्री रोय। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत ये बोल हैं हम तुम युग युग से। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गुन्नौर यूपी से। फिल्म का नाम है जुदाई, गीत के बोल है मार गई मुझे तेरी जुदाई। इस गीत की फरमाइश करते हैं फारूक अली खान, फैजाद फराज, फरहीन फरान, फारिया और ताफीर जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। जाफराबाद से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख और कल्पना जी देशमुख। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाली खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, टिवांशी खेड़ा और खेड़ा परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। बुलंदशहर से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद सहीद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सुरफुद्दीन सुहान, अरजान अब्बासी और अब्बांजी अब्बासी। दिल्ली से जुड़ रहे हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधानजी खुराना। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं शिवाजी नगर से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर, इंद्राबाई, चक्कूताई। बुलडाणा से जुड़ना चाह रहे हैं दीपाली राम धाड़ी, स्वराज राम धाड़ी। अमरावती से जुड़ रहे हैं सुनेन पवन भोड़ी, तनुज पवन जी। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रही सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित जी आहूजा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं आवरपुर से शेख हबीब, छोटू भाई शेख, साजन शेख, फैजा शेख, फारूक जी शेख, वशिम शेख, अफसाना शेख, अश्मेरा जी, फरहान शेख, जनित शेख, फरहान शेख, अब्दुल लोहेवाला और शाहिदा जी शेख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मार गई मुझे तेरी जुदाई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल ही तेरी मोहब्बत ने दिल में। इस गीत की फरमाइश करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, कुमारी दुर्गेश्वरी जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सूत रमेश शाहू। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अलीबा, दानिश जी अंसारी। बक्सर से जुड़ रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा और सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से दुर्गा राम शाहू, अजय कुमार शाहू, जे और किशन शाहू, श्रीमती कुमारी जी शाहू, मती इंद्राणी, माया देवी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार दले, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका जी दले। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने जी। इस गीत के अनुरोध करता है श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका जीविका, सोनू कुंभार, अर्चना कुंभार। पुनावली से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शायिका सोनवने जी। सहारनपुर से जुड़ रही है समेत मशरूम, साइना हसन, आक्सा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी, अदीफ अली जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ गोड़ानी जी। इस गीत की अनुरोध करता है गंजू द्वारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद अलफेक जी, शेवा शेख। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से। फिल्म का नाम है विजयपद, गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत की फरमाइश करता है बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे पटिया कला दुर्ग से संजय, सुजिता, शशंक जी शाहू, सीमा जी शाहू। गंजडुडवारा से जुड़ना चाह रहे मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे वासिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू जी। बागपत से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। इस गीत के अनुरोध करता है बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से अभय पाल, अजय पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, अभिषेक पाल और दिव्यांशी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मेली। इस गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत की फरमाइश करता है उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, सृष्टि बन्नी, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत। इस गीत के अनुरोध करता है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शशिला अंसारी, रिहान अंसारी। लोनी से जुड़ रहे नसीमुल इस्लाम, नूरीन, प्रकाशवीर राजपूत, अनुश्रिया चंद्रवंशी। खडवा से जुड़ रहे राकेश, पिंकी, दुर्गा जी। जलाधार से जुड़ना चाह रहे हैं मीना कौर, संदीप कौर। रायगढ़ से जुड़ना चाह रहे लालचंद मिश्रा, कुमकुम जी मिश्रा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं सोहन जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बीबी वेदही जोशी, बीबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकित जी जोशी। मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं श्रीमती जेवंती जी केवट। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं अब्दुल गफ्फार डावर जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर, रुद्रा रामेकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है मोताल महाराष्ट्र से विजय रतनमाला, आरती गोरी और ओम प्रकाश जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कासगर से एस असलम सेफी, जुबनिसा बेगम, अकरम सेफी, सदाम सेफी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, नंदनी नामदेव, नेहा नामदेव, छन्नूलाल श्रीवास, रंजन शाहू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज के शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीवाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं, इसी के बाद दोस्तों शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

जगत में प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। जैसे कोई बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाता तो कोई अधिक भार नहीं उठा पाता, कोई असाध्य रोग से पीड़ित रहता है तो कोई पड़े हुए पाठों को स्मरण में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण और भी हैं। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीते हैं? इस कारणवश हृदय में दुख और असंतोष रहता है सदा। निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो अपने पुरुषार्थ और श्रम से उस निर्बलता को पराजित कर देते हैं। क्या भेद है उनमें और अन्य लोगों में, क्या आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए।

भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता रहता है, किंतु जीवन जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव। पर हम ये जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते। या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को घेर कर बैठे रहते हैं, या फिर आने वाले समय के लिए हम योजनाएं बनाते रहते हैं और जीवन जीवन बीत जाता है। एक सत्य यदि हम हृदय में उतार लें कि ना हम भविष्य देख सकते हैं ना ही भविष्य निर्मित कर सकते हैं, हम तो केवल धैर्य और साहस के साथ भविष्य को आलिंगन दे सकते हैं, स्वागत कर सकते हैं भविष्य का, तो क्या जीवन का हर पल जीवन से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हूं, यहाँ आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ये भी आपड़ा थकी कई आश लागे है। हो गए, अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, लेकिन आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि हमें सबसे कटकर नहीं बल्कि जुड़कर भी आत्मनिर्भर बनना है। आज का समय आत्मनिर्भरता का समय है मनीषा। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है।
0: जी हाँ।
1: अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता
0: है। बिल्कुल।
1: लेकिन अक्सर लोग आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेले चलना, सबसे अलग हो जाना और केवल अपने बारे में सोचना समझ लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे मानते हैं कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें दूसरों से कटना होगा।
0: जी हाँ।
1: जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका जुड़ाव है।
0: बिल्कुल।
1: परिवार, समाज, मित्र, सहयोग और सामूहिक प्रयास ही किसी व्यक्ति को वास्तव में मजबूत बना सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। अब बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सबसे कटकर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हम देखते हैं कि आज का समय आत्मनिर्भरता का समय माना जाता है। हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है और अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत होना नहीं है, बल्कि मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से सक्षम होना भी है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन जागृति जी, हम देखते हैं कि आज कई लोग आत्मनिर्भर बनने का गलत मतलब निकाल लेते हैं। वे सोचते हैं कि आत्मनिर्भर बनने के लिए लोगों से दूरी बनानी पड़ती है, अकेले रहना पड़ता है। श्रोता साथियों, किसी की मदद न लेना ये सब मान लेते हैं, जबकि श्रोता साथियों सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
1: जी हाँ।
0: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज, परिवार और रिश्तों के सहारे आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि वह सबसे कटकर ही सफल हो सकता है तो श्रोता साथियों यह सोच अधूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहयोग, प्रेम, विश्वास और आपसी संबंध की आवश्यकता होती है। वास्तव में श्रोता साथियों, जुड़कर चलने वाला व्यक्ति अधिक मजबूत बनता है क्योंकि उसे अनुभव, प्रेरणा और सहयोग भी मिलता है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि कहा गया है कि रिश्तों की डोर थामकर चलेंगे तो आत्मनिर्भरता की राह आसान होगी।
0: जी हाँ।
1: आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल आर्थिक रूप से सक्षम होना नहीं है श्रोताओं, इसका अर्थ मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होना है। एक व्यक्ति तब पूर्ण आत्मनिर्भर बनता है जब वह दूसरों के साथ मिलकर चलना सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि कोई व्यक्ति सबसे कटकर जीने लगे, किसी की सलाह न माने और हर कार्य अकेले करने की कोशिश करे तो श्रोताओं धीरे धीरे उसका जीवन तनाव और अकेलेपन से भर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसके विपरीत ही जो व्यक्ति लोगों को साथ लेकर चलता है वो कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बना रहता है। इसलिए कहा गया है मनीषा कि साथ चलने वाला कभी कमजोर नहीं होता, वही सच्चा आत्मनिर्भर बनता है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसीलिए हम श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि सबसे कटकर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर हम बन सकते हैं। आत्मनिर्भरता का मतलब श्रोता साथियों अकेले नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाते हुए समाज के साथ मिलकर आगे बढ़ना होता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, आत्मनिर्भरता का सीधा अर्थ है अपने कार्य स्वयं करने की सक्षमता हमें विकसित करनी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति किसी के संबंध को तोड़ दे। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति जागृति जी वही होता है जो अपनी जिम्मेदारियों को समझे, अपने कर्तव्यों को स्वयं समझे और उसे कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखे। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता के कई रूप होते हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता, मानसिक रूप से आत्मनिर्भरता।

0: सामाजिक रूप से आत्मनिर्भरता, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भरता। यदि जागृत है जो कोई व्यक्ति केवल धन कमाने में लग जाए लेकिन उसके रिश्ते टूट जाए तो वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं कहलाएगा।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची आत्मनिर्भरता साथियों वही है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन बना के जिए।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि कहा गया है कि जहाँ अपनापन होता है वही आत्मनिर्भरता कहलाती है। हमारे परिवार का उदाहरण ही सबसे बड़ा प्रमाण है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल,
1: परिवार में हर व्यक्ति की भूमिका अलग होती है लेकिन सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मनीषा, माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, बच्चे घर में खुशियां लाते हैं, परिवार के सदस्य कठिन समय में एक दूसरे का साथ निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यदि परिवार का हर सदस्य ये सोच ले कि उसे किसी की जरूरत नहीं तो परिवार बिखर जाएगा। इसी प्रकार समाज भी आपसी जुड़ाव से चलता है। आज के समय में संयुक्त प्रयासों की शक्ति को दुनिया ने समझा है। बड़ी बड़ी कंपनियां, संस्थाएं और संगठन अकेले व्यक्ति के दम पर नहीं चलते हैं। वहाँ टीम वर्क सबसे महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक व्यक्ति के पास ज्ञान हो सकता है लेकिन सभी लोगों की अलग अलग क्षमताएं मिलकर सफलता का बड़ा रास्ता बनाती है।
0: जी हाँ,
1: यदि किसान, मजदूर, व्यापारी, शिक्षक और वैज्ञानिक सब अलग अलग हो जाए तो मनीषा देश का विकास रुक जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए श्रोता साथियों आत्मनिर्भरता का असली आधार सहयोग है। कहा गया है कि मिलजुल कर बढ़ने वाला समाज ही सच्चे विकास की पहचान बनता है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से, हम जान रहे थे कि सबसे कटकर नहीं बल्कि जुड़कर भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो मनीषा, यही हमारे युवा साथियों को हम बताएं तो श्रोताओं, आज सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया ने लोगों को एक दूसरे से जोड़ने के साथ साथ दूर भी किया है। लोग ऑनलाइन तो हजारों लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं।
1: जी हाँ।
0: आत्मनिर्भर बनने की दौड़ में लोग भावनात्मक रूप से अकेले पड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में जरूरत है श्रोताओं कि हम अपने रिश्तों को समय दें, लोगों से संवाद करें और सामूहिकता की भावना को बनाए रखें।
1: जी हाँ।
0: कहा गया है कि तकनीक जरूरी है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट उससे भी ज्यादा जरूरी है।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि मनुष्य जन्म से ही दूसरों से जुड़ा रहता है। एक बच्चा अपने माता पिता के सहारे बड़ा होता है, शिक्षक उसे शिक्षा देते हैं, मित्र उसे सहयोग देते हैं, समाज उसे अवसर प्रदान करता है। यदि श्रोता साथियों ये सब न हो तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे जीवन का हर क्षेत्र किसी न किसी रूप में दूसरों से जुड़ा होता है।
0: बिल्कुल।
1: किसान अन्न उगाता है, शिक्षक शिक्षा देता है, डॉक्टर इलाज करता है और मजदूर निर्माण करता है। साथियों, हर व्यक्ति दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। यही सामाजिक जुड़ाव हमें और मजबूत बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, हम कहना चाहेंगे कि यदि कोई व्यक्ति यह सोचकर कट जाए कि वह अकेले सब कुछ कर लेगा तो धीरे धीरे उसका जीवन कठिन हो जाएगा और तनावपूर्ण हो जाएगा। जागृति जी।
0: जी हाँ।
1: इसीलिए समाज के साथ जुड़कर चलना ही समझदारी है।
0: बिल्कुल मनीषा, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को ये भी कहना चाहेंगे कि एकता में शक्ति है और शक्ति में ही आत्मनिर्भरता है।
1: जी हाँ।
0: श्रोताओं, महिलाओं की आत्मनिर्भरता का उदाहरण भी यही सिखाता है कि जब महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर साथ काम करती है तो वे आर्थिक रूप से भी मजबूत बनती है। मनीषा,
1: बिल्कुल,
0: वे एक दूसरे को प्रोत्साहित करती है, नई चीजें सीखती है और अपने परिवार को भी आगे बढ़ाती है।
1: जी
0: ये
1: हाँ।
0: साबित करता है श्रोताओं कि जुड़ाव और सहयोग आत्मनिर्भरता की राह को और मजबूत बनाता है।
1: जी हाँ।
0: देश की आत्मनिर्भरता भी केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं हो सकती, इसके लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। जब लोग स्थानीय वस्तु को अपनाते हैं मनीषा, छोटे व्यापारियों का समर्थन करते हैं और समाज के विकास में भाग लेते हैं, तभी देश मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल।
0: यदि हर व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचेगा तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि परिवार व्यक्ति की पहली पाठशाला होती है। परिवार ही हमें संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी सिखाता है।
0: जी हाँ।
1: एक मजबूत परिवार व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आज कई युवा यह सोचते हैं कि स्वतंत्र बनने के लिए परिवार से दूरी बनाना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि परिवार के साथ व्यक्ति को आत्मविश्वास देता है। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो परिवार उसे संभालता है और दोबारा प्रयास करने के लिए प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल।
1: एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से जुड़ा रहता है वह जीवन में अत्यधिक संतुलित और सफल बनता है। परिवार के सहयोग से व्यक्ति आत्मनिर्भरता की राह पर मजबूती से आगे बढ़ पाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, और एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। हमारे युवा साथियों को हम सुनाते हैं। श्रोता साथियों, एक गांव में दो युवक रहते थे। पहला युवक हमेशा कहता था कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सब काम करता था।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा युवक था, वो लोगों से जुड़कर रहता था मनीषा, सबकी मदद करता था, जरूरत पड़ने पर दूसरों से सहायता भी लेता था। और एक बार गांव में बाढ़ आ गई।
1: जी।
0: पहला युवक अकेला पड़ गया और अपनी चीजें नहीं बचा सका, लेकिन दूसरे युवक की मदद के लिए पूरा गाँव खड़ा हो गया।
1: जी हाँ।
0: उस दिन पहले युवक को समझ आया कि आत्मनिर्भरता का मतलब अकेलापन नहीं बल्कि संबंधों की ताकत के साथ आगे बढ़ना है।
1: जी हाँ।
0: और कहा गया है कि जो दूसरों का सहारा बनता है वही मुश्किलों में सहारा पाता है। तो श्रोताओं, हमें अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देनी होगी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रतिस्पर्धा जरूरी है, लेकिन संवेदनाएं और संबंध उससे भी अधिक जरूरी है। यदि सफलता पाने के बाद इंसान अकेला रह जाए तो वो सफलता अधूरी है।
1: जी हाँ।
0: सच्ची उपलब्धि तो वही है जिसमें अपने साथ दूसरों का भी विकास हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: वही सफलता महान है जिसमें सबका सम्मान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता का अर्थ अकेलापन ही नहीं, सबसे कट जाना, रिश्तों को तोड़ देना या किसी की सहायता न करना आत्मनिर्भरता नहीं कहलाती है। सच्ची आत्मनिर्भरता वह है साथियों जिसमें व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समझते हुए समाज, परिवार, रिश्तों के साथ जुड़कर आगे बढ़ता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हमें जुड़ाव, प्रेम, सहयोग, अनुभव हमें आत्मविश्वास देते हैं। यही चीजें हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जागृति जी दूसरों के साथ मिलकर चलता है वह अधिक सफल, संतुलित और खुश रहता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों को समझना चाहिए कि सबसे कट कर नहीं जुड़कर भी आत्मनिर्भर वे बन सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। और जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आत्मनिर्भरता का मार्ग अकेलेपन से नहीं बल्कि जुड़ाव से होकर गुजरता है। मनुष्य जितना दूसरों से जुड़ता है उतना ही मजबूत बनता है। परिवार, समाज, मित्र और सहयोग हमारी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं मनीषा
1: जी। हाँ।
0: हमें ऐसा समाज बनाना होगा जहां लोग एक दूसरे का साथ पकड़कर आगे बढ़े, क्योंकि अकेला व्यक्ति शायद तेज चल सकता है लेकिन मिलकर चलने वाले लोग बहुत दूर तक जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम आत्मनिर्भरता को स्वार्थ और अलगाव से न जोड़ें। हमें ये समझना होगा कि सहयोग, प्रेम, संवाद और सामूहिक प्रयास ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। जब हम दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तभी हमारी सफलता स्थायी और सार्थक बनती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हमें कटने नहीं बल्कि जुड़ने की संस्कृति अपनानी होगी।
1: जी हाँ।
0: यही सच्ची आत्मनिर्भरता है, यही मानवता की असली पहचान है। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि कट कर नहीं, जुड़ कर बढ़े, अकेले नहीं मिलकर आत्मनिर्भर बने। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम सभी जानते हैं श्रोता साथियों कि बचपन को जीवन का सबसे सुंदर और निश्चित समय माना जाता है। यह वह अवस्था मानी जाती है जहाँ मासूमियत, हंसी, खेल और उत्साह भरा होता है।
0: जी हाँ,
1: बच्चे छोटी छोटी बातों में खुश हो जाते हैं और हर दिन को नए उत्साह के साथ जीते हैं। लेकिन आज के समय में एक चिंता तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, वो है बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि कशिश, अब पहले की तरह बच्चों में धैर्य कम दिखाई देता है। छोटी सी बात पर गुस्सा करना, बात न मानने पर रोना, जल्दी नाराज होना, किसी से ठीक से बात न करना या हर समय तनाव में रहना जैसी आदतें बच्चों में बढ़ती ही जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: यह केवल व्यवहार की समस्या नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उनके मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ एक गंभीर संकेत है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ गीत सुनवा दे हम।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है। साथियों, हम देखते हैं कि बच्चों का चिड़चिड़ा होना केवल उनका स्वभाव नहीं होता, बल्कि अंजलि जी, इसके पीछे ढेर सारे कारण भी छिपे हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिन्हें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय रहते इन कारणों को नहीं समझा गया तो इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व, पढ़ाई और साथ साथ रिश्तों और भविष्य पर भी पड़ सकता है। हम देखते हैं अंजलि जी कि चिड़चिड़ापन एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा, नाराज या फिर परेशान हो जाता है।
1: जी हाँ,
0: बच्चों में ये कई रूपों में दिखाई दे सकता है। जैसे कि अगर बच्चा बार बार गुस्सा कर रहा है तो वो चिड़ा हुआ है। जिद करना, बात बात पर रोना, किसी की बात न सुनना और न ही किसी से बात करना, जल्दी परेशान हो जाना, अकेले रहना और दूसरों से लड़ना। हम देखते हैं कि ये सभी व्यवहार कई बार बच्चों की अंदरूनी परेशानी का संकेत हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों, बात करें कि बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ने के क्या कारण है, तो सबसे पहली बात आती है मोबाइल और स्क्रीन का अत्यधिक उपयोग। आज के बच्चे बहुत कम उम्र में मोबाइल, टीवी और वीडियो गेम से जुड़ जाते हैं। घंटों स्क्रीन देखने से दिमाग पर दबाव बढ़ता है, नींद प्रभावित होती है और धैर्य कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: बच्चा वास्तविक दुनिया से कटने लगता है। जब बच्चों को मोबाइल नहीं मिलता तो वे गुस्सा करने लगते हैं और धीरे धीरे ये आदत चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है।
0: जी हाँ।
1: आज का बच्चा कशिश बहुत छोटी उम्र से ही प्रतियोगिताओं का सामना कर रहा है। अच्छे नंबर लाने का दबाव, हर क्षेत्र में आगे रहने की होड़, माता पिता की अपेक्षाएं, इन सब के कारण बच्चा मानसिक तनाव महसूस करता है।
0: बिल्कुल,
1: वो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता और चिड़चिड़ा होने लगता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि आजकल व्यस्त जीवन शैली के कारण कई माता पिता बच्चों के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाते, जिसके कारण बच्चे जो हैं वे अपनी बातें साझा नहीं कर पाते, अकेलापन महसूस करते हैं और भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यह स्थिति धीरे धीरे गुस्से और चिड़चिड़ेपन में बदल जाती है। अगर घर में झगड़े होते हो, हर समय तनाव रहता हो, बच्चों को डांटा जाता हो, तो उसका सीधा असर बच्चों के मन पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: डर, तनाव और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे कशिश कार्यक्रम के माध्यम से कि कम नींद बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करती है। नींद पूरी न होने पर बच्चा जल्दी गुस्सा करता है।
0: बिल्कुल,
1: ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हर समय थका हुआ महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, अब यही अगर इसी के आगे बात करें गलत खान पान की, तो हम देखते हैं कि जंक फूड और अनियमित भोजन भी बच्चों के व्यवहार पर असर डालता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि दोस्तों, ज्यादा चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक या पैकेट वाले स्नैक्स बच्चों के दिमाग और शरीर दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अगर दोस्तों की बात करें तो अंजलि जी, बच्चा अगर स्कूल में परेशान किया जाता हो, दोस्त न बना पा रहा हो या फिर तुलना का सामना कर रहा हो, तो उसके अंदर गुस्सा और निराशा बढ़ने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: जिसके कारण बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है।
1: इसी के साथ कशिश, अब बात आती है कि जब बच्चों को हर समय यह मत करो, वैसे मत करो, वैसे मत बोलो, तुम गलत हो जैसे बातें सुननी पड़ती है, तो वे खुद को दबा हुआ महसूस करने लगते हैं और इन सारी चीजों का प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: रिश्तों पर पड़ता है, उनका आत्मविश्वास कम होता है और मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से जान ही पा रहे हैं कि बच्चों में चिड़चिड़ापन क्यों बढ़ रहा है, उसके क्या कारण है और समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो कारण और प्रभाव के बारे में तो हमने जाना, आगे हम जानेंगे कि क्या समाधान हो सकते हैं। लेकिन अभी मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना हमारे साथियों को हम एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें कि बच्चों में चिड़चिड़ापन जो बढ़ जाता है उसके क्या समाधान है।
1: बिल्कुल,
0: तो सबसे पहले हमें बच्चों को समय देना है। अक्सर कशिश हम देखते हैं कि बच्चों की शिकायत रहती है कि उनके माता पिता के पास उनके लिए समय ही नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए माता पिता को बच्चों के साथ समय बिताना है, उनसे बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है और उनके साथ खेलना है। मोबाइल और टीवी का समय तय होना चाहिए। अधिकतर माता पिता इधर उधर व्यस्त रहते हैं और वो खुद ही बच्चों को मोबाइल दे देते हैं या टीवी देखने के लिए दे देते हैं।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि बच्चा कितनी देर टीवी देख रहा है, कितनी देर मोबाइल देख रहा है। यही कशिश कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि खेल और शारीरिक गतिविधियां भी हमें बढ़ानी है।
1: जी हाँ।
0: आउटडोर गेम्स, योग, साइकिल चलाना, नृत्य, इन सबसे बच्चों का मन शांत रहता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, ये बात आपने सही कही। इसी के साथ माता पिता को बच्चों को हर बात पर डांटने के बजाय समझने की कोशिश करनी है। समय पर सोना, पौष्टिक भोजन देना और नियमित दिनचर्या अपनाएं दोस्तों, क्योंकि जब बच्चों की सही दिनचर्या होती है तो वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वहीं अगर रचनात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात करें अंजलि जी, तो हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को ढेर सारी गतिविधियों में भाग लेना बड़ा अच्छा लगता है साथियों। ऐसे में माता पिता कई बार व्यस्त रहते हैं जिसके कारण वे बच्चों की रुचियों को पहचान नहीं पाते। ऐसे में दोस्तों, जो रचनात्मक गतिविधियां होती है उन्हें आप बढ़ावा दें, जैसे कि बच्चों को आप चित्रकला करवाएं, कहानी पढ़वाएं, संगीत सिखा सकते हैं या फिर हस्तकला भी करवा सकते हैं।
0: जी जी।
1: इनसे अंजलि जी बच्चों में अलग अलग क्षेत्र को लेकर रुचि भी बढ़ेगी, साथ ही उनका तनाव भी कम होगा।
0: बिल्कुल।
1: अगर दोस्तों बच्चा दुखी है, गुस्से में है या फिर डर रहा है, तो उसकी भावनाओं को आप नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, क्योंकि अंजलि जी ऐसे में माता पिता को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब माता पिता बहुत ज्यादा सख्त या कठोर होते हैं तो बच्चे कई ऐसी बातें हैं जो माता पिता को नहीं बता पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि वह बच्चों की बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे और उनको जो भी परेशानी हो रही है उसका जल्द से जल्द हल निकाले।
0: बिल्कुल कशिश, समाज और स्कूल की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल बनाए जहां बच्चे बिना डर के अपनी बात कह सकें।
1: जी।
0: समाज को बच्चों की भावनाओं को समझने की जरूरत है, न कि उन्हें जिद्दी कहकर नजरअंदाज करने की। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर चिड़चिड़े बच्चे के पीछे एक अनसुनी भावना छिपी होती है।
1: बिल्कुल।
0: जरूरत केवल उसे डांटने की नहीं बल्कि समझने की होती है। बच्चों में बढ़ता चिड़चिड़ापन केवल एक छोटी आदत नहीं बल्कि यह बदलती जीवन शैली, बढ़ते तनाव और भावनात्मक दूरी का परिणाम है। बच्चों का गुस्सा कई बार उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी अनकही परेशानियों की आवाज होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए जरूरी है कि हम उनके व्यवहार को केवल गलत आदत समझकर नजरअंदाज न करें बल्कि उनके पीछे छिपे कारणों को समझें।
1: जी
0: हाँ। हमें बच्चों को ऐसा वातावरण देना होगा जहां वे सुरक्षित, खुश और समझे हुए महसूस करें, जहां उन्हें केवल नियम न मिले बल्कि प्यार, समय और अपनापन भी मिले। क्योंकि जब बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं तभी वे जीवन की चुनौतियों का सही तरीके से सामना कर पाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए दोस्तों आप याद रखें कि हर बच्चा ध्यान, प्यार और समझ का हकदार है। अगर हम बच्चों की भावनाओं को समय रहते समझ लें तो हम न केवल अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं बल्कि उनका भविष्य भी उज्जवल कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
0: बिल्कुल।
1: और हमने जाना कि हमें किस प्रकार से बच्चों के चिड़चिड़ेपन के जो स्वभाव है उसे समझना है और उसे नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि इसके पीछे बच्चों की कई अनसुनी कहानियां होती है या फिर भावनाएं होती हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में उनकी बातों को हमें समझना है, उनकी भावनाओं को हमें समझना है।
0: जी हाँ।
1: तो बातें हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें।

0: साथियों, कभी कभी बच्चे गुस्से में नहीं होते, वे बस चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे। बच्चों की आवाज को सुनना सीखिए, क्योंकि चुप्पी भी कई बार बहुत कुछ कहती है। हर मुस्कुराता बच्चा जरूरी नहीं कि खुश हो, कई बार उसकी हंसी के पीछे थकान छिपी होती है। इन्हीं बातों के साथ आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: जी हाँ,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करूँ, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज तकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनो ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणीमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थे जह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बुनो आज हमारे कार्यक्रम में आप तक की बातचीत नो विषय है कि अगर पशुओं में पानी की कमी थी सा तो आना हो प्रभाव पड़े है ने हर ते आपणे पशुओं ने पानी की जो आवश्यकता है इन्हें हमसवानी जरूरत है। तो आज के कार्यक्रम में अणा विषय माते हमारी आप की घना कानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा की इतने मोरे करा अपनी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहसू आपड़ो रेडियो अपनी बातें वाग रेडियो 90.8 एफएम माते।

0: फ्रेंड बनू। गीत तो आई शू पूरू ना गीत बात एक वक्त फिर आप सबनों घनेमान स्वागत कर रहा हूँ अमारे यहाँ कार्यक्रम खेती बाड़ी में। जेम की भाई बनू गीत के पहले आपने विषय बताड़ू तू कि आज आप बातचीत करवा वाला हो कि पशुधन में अगर पानी की कमी थी जा तो आना हो प्रभाव थी सके। तो अना विषय में बातचीत करवा बल्ला कार्यक्रम तक जुड़ी रहे मनीष जी सर। तो सब तक पहले अपना हामरी लो एना की बातें मोरे कर आपकी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्ते अंजलि जी।
0: सर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेती बाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है गर्मियों में पशुधन में पानी की कमी के क्या प्रभाव है। हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में पानी की आवश्यकता हम सभी को होती है। ऐसे में पशुधन में अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसका क्या असर पड़ता है और किस तरीके से हमारे जो पशुपालक भाई बहन हैं वो इस प्रभाव से हमारे पशुओं को बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए हमारे क्षेत्र में अभी गर्मियां शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे अब ये समय आगे बढ़ेगा गर्मी भी समय के साथ और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है यानी कि गर्मी बढ़ती है तो यह पशुओं पर अगर इस समय पानी की कमी होती है तो उसके कई गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं और इसके प्रभाव कभी कभी स्थायी होते हैं। पानी की कमी से पशुधन में कई शारीरिक रोग हो सकते हैं, मानसिक रूप से वो अस्वस्थ हो सकते हैं, उनके उत्पादन पे इसका असर होता है और हम ये बोल सकते हैं कि उनके संपूर्ण जीवन में कुछ स्थायी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं जो इस दौरान पानी की कमी के कारण उन्हें हुई थी, तो वो जीवन भर बनी रह सकती है।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा।
1: तो इस समस्या से बचने के लिए गर्मियों में पशुओं को नियमित रूप से पानी देना और उन्हें ठंडे स्थान पर रखकर उनकी देखभाल करना महत्वपूर्ण होता है।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि पानी किस तरीके से महत्वपूर्ण है, यही हमारे अगर पशु में पानी की कमी हो जाती है तो उनके शरीर पर

0: का क्या असर पड़ता है?
1: बिल्कुल, हम इसे इस तरीके से भी अलग अलग रूप में देख और समझ सकते हैं कि शरीर पे होने वाले असर कौन से हैं। यदि गर्मियों में पशुधन को पानी की कमी होती है तो सबसे पहला होता है निर्जलीकरण, जिसे हम सामान्य रूप से डिहाइड्रेशन के रूप में जानते हैं। तो गर्मियों में पानी की कमी से पशुधन के शरीर में जो पानी की कमी होती है तो कई बार वो उसे सहन नहीं कर पाते हैं, जिससे उनकी त्वचा सूखने लगती है, शरीर के अंगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कई बार उनका जो है रक्तचाप बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये होने से इनके जो शारीरिक सामान्य क्रियाएं हैं ये उसको प्रभावित करता है और उनके शरीर में ताजगी की कमी हो जाती है। यानी कि जिस तरह से एक स्वस्थ पशु होता है वो उस तरह से ना होके उसमें कई आलसीपन जैसे लक्षण हमको दिखाई देने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, गर्मी के झटके जिसको बोलते हैं, तो ये भी पानी की कमी के कारण हो सकते हैं, क्योंकि पानी शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है तो इससे उन्हें गर्मी का झटका लग सकता है, जिसे सामान्य भाषा में हम लू लगना भी बोलते हैं। और कई बार कमजोर पशुओं धन के मामले में ये जानलेवा भी होता है। यदि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारा पशुधन सुस्त है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या तो तेज सांस चल रही है, या हम यदि हाथ लगा के देखें ऐसी असामान्य अवस्था हमें नजर आए, तो उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हो सकती हैं, तो ये लू लगने के जो है लक्षण होते हैं। इसमें उनके शरीर का तापमान भी जो है बढ़ने लगता है। एक होता है जब अधिक तापमान और पानी की कमी पशुधन के शरीर में होती है तो उनकी कार्य क्षमता तो प्रभावित होती ही है, साथ ही साथ उनकी जो सहन शक्ति होती है वो भी प्रभावित हो जाती है। यानी कि हम इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है।
0: बिल्कुल।
1: अब शरीर के प्रभाव में चमड़ी पर भी जो है आपको कई बार समस्या देखने को मिलेगी, या फर यानी कि बाल। तो कुछ पशुधन ऐसे होते हैं जिनके बाल घने होते हैं, तो पानी की कमी से पशुधन की त्वचा सूखी और खुरदुरी हो सकती है। इसके अलावा उनके फर यानी कि बालों को भी नुकसान हो सकता है, या घने बाल वाले पशुधन के जो है बाल गिरने लगते हैं, तो कई बार इनका भी कई पशुपालक व्यवसायिक रूप में उपयोग करते हैं फर का, तो इससे उनको इसमें भी नुकसान होता है। दूसरा, यदि देखा जाए तो चमड़ी के ऊपर जो बाल या फर होते हैं ये छोटी मोटी चोटों को लगने से बचाते हैं, तो यदि ये इसके कारण असमय गिर जाते हैं तो इनसे उनको चोट लगने का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि अगर पशुओं में पानी की कमी होती है तो उनके शरीर पर किस तरीके से अलग अलग प्रकार से हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं, यही सर पानी की कमी के कारण पशुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: जी बिल्कुल, ज़्यादातर पशुधन को उनके उत्पादों के लिए या उनकी कार्य क्षमता के लिए हम उनका पालन पोषण करते हैं। तो दुग्ध देने वाले जो हमारे पशुधन हैं, यदि उन्हें इस समय पानी की कमी होती है तो पहला हम इसका प्रभाव देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन घट सकता है, क्योंकि पानी की कमी से उनके शरीर में तरल की कमी हो जाती है और दूध का अधिकांश भाग जो होता है वो तरल होता है, और इसी के कारण उनके दुग्ध के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। दूसरा होता है कि हमारे क्षेत्र में सामान्य रूप से बकरों और बकरियों को पाला जाता है, जिसमें बकरों से जो है विशेष रूप से आमदनी प्राप्त की जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो यदि पानी की कमी होती है तो इससे उनका वजन घट सकता है और अन्य नकारात्मक परिणाम जिन्हें हम बोल रहे हैं कि ये शरीर पर असर करते हैं ये भी हो सकते हैं। तो इन नकारात्मक परिणामों के चलते उनका जो लाभ है वो कहीं शून्य ना हो जाए, इसका भी आशंका बनी रहती है।
0: बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरीके से ये बताया कि पानी की कमी के कारण हमारे जो पशु हैं उनके दूध के उत्पादन में गिरावट आती है, साथ ही अगर हम कुछ ऐसे पशु पाल रहे हैं जिनका वजन बढ़ना चाहिए और वो नहीं बढ़ता है तो ये भी पानी की कमी का एक कारण हो सकता है। यही सर, क्या प्रजनन और संतति पर भी इसका कोई प्रभाव हमें देखने को मिलता है?
1: जी बिल्कुल। यदि प्रजनन पर इसके प्रभाव देखें तो पानी की कमी के कारण विशेष रूप से मादा पशुधन में प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इससे या तो उनके गर्मी पे आने का समय लंबा हो सकता है, कई बार गर्भपात की समस्या भी देखने को मिलती है।
0: जी जी।
1: तो इस तरह से प्रजनन और संतति पर इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा यदि देखा जाए तो जो छोटे बछड़े होते हैं वो या तो होने वाले हैं या वो हो चुके हैं और बहुत छोटे हैं, तो अगर होने वाले हैं तो गर्भवती पशुधन में पानी की कमी के कारण भ्रूण का विकास प्रभावित होता है।
0: बिल्कुल।
1: और इससे कमजोर संतति का जन्म होता है जो आगे आने वाले समय में उनके उत्पादन को प्रभावित करता है। दूसरा, यदि बहुत छोटे जो बछड़े हैं उनके शरीर में पानी की कमी होती है तो उनके भी आगे होने वाले उत्पादन को ये प्रभावित करता है, चाहे वो नर हो या मादा। तो स्थायी रूप से कई बार इसके नुकसान देखने को मिले हैं।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आप कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी बातों को हमें बता रहे हैं, तो क्या कोई और भी प्रभाव हैं जो पशुओं पर पानी की कमी के कारण हमें देखने को मिलते हैं?
1: जी बिल्कुल। इसका जो एक सीधा प्रभाव होता है वो उनके पाचन तंत्र पे भी होता है। यदि पशुधन के शरीर में पानी की कमी होती है तो कहीं ना कहीं उनकी भूख में भी कमी हो जाती है। और इसका कारण होता है कि पानी की कमी से पशुधन का चयापचय धीमा पड़ जाता है जिससे उनकी भूख कम हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और भूख कम होने से उन्हें उचित मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, क्योंकि जितना खाना या चारा उन्होंने खाना चाहिए वो नहीं खाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उसे नहीं खाने से उनके उत्पादन में ये प्रभाव देखने को मिलता है। अगर पाचन संबंधी समस्या की यहाँ बात की जाए तो पानी की कमी के कारण चारा जो उन्होंने खाया है उसके पचने में भी कठिनाई होती है, जिससे उनका पाचन तंत्र जो है ठीक से काम नहीं करता।
0: बिल्कुल।
1: इससे कब्ज हो सकता है, गैस हो सकती है या पेट में अन्य तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इन समस्याओं से भी हमारे पशुधन प्रभावित होते हैं। बीमारियों का खतरा भी इस स्थिति में बढ़ जाता है। जैसे शरीर में पानी की ज़्यादा कमी होती है उससे ये जो हमने अभी समस्याएं देखी तो कहीं ना कहीं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये प्रभावित करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि प्रभावित होती है तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है।
0: जी बिल्कुल।
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से इस समय जो ज़्यादातर बीमारियां आसानी से होती हैं उसमें दस्त लग सकते हैं, मूत्र रोग का संक्रमण हो सकता है या त्वचा के रोग हो सकते हैं।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमें ढेर सारी बातों को बताया है, तो सर यही बात करना चाहेंगे कि इसके निवारण के क्या उपाय हमारे पशुपालक भाई बहनों को अपनाने चाहिए?
1: बिल्कुल। निवारण के उपाय बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसानी से हम इन उपायों को कर सकते हैं जिससे इनका निवारण भी हो सकता है। और ये उपाय हैं, तो यानी कि उपाय करने से हमें समस्या आएगी ही नहीं। हमेशा हमारे पशुधन के लिए पशुशाला के पास में, पशु शेड के पास में पशुधन के लिए ताज़ा, ठंडा और साफ पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: हो सके तो पशुधन को छायादार स्थान पर ही रखें और गर्मी से बचाव के लिए हवादार जगह जो हो वहाँ पे उन्हें रखें, जहाँ पे गर्म हवा या लू ना लगे।
0: बिल्कुल,
1: इस समय क्योंकि पशुधन ज़्यादा हरा चारा नहीं मिल पाता और इस कारण उनको नहीं दे पाते हैं, तो यदि हो सके तो अन्य तरीके से उनकी पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करें। अगर हमारे पशुपालकों के आसपास चारागाह हैं तो उनमें संभव हो तो सिंचाई का प्रबंध करें, जिससे गर्मियों में भी उन चारागाहों में थोड़ी बहुत हरी घास बनी रहे और वो पशुधन को उपलब्ध हो। यदि पशुधन को हम ज़्यादा समय बांध के रखते हैं तो दिन में 3 से 4 बार कोशिश करें कि पशुधन को पानी पिलाएं। हो सकता है उसमें से एक आध बार वो न भी पिए, पर आप नियमित अंतराल पे उनको पानी देते रहें।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें हो गई हैं, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जी, तो अंत में अगर निचोड़ रूप में हम इसकी बात करें तो गर्मियों में पशुधन के स्वास्थ्य और उत्पादन पर पानी की कमी के जो गंभीर प्रभाव हो सकते हैं उनसे बचने के लिए उचित देखभाल और सही तरीके से प्रबंधन करें। इससे पशुधन स्वस्थ रहेंगे, उनकी उत्पादन को स्थायी बनाया जा सकता है और वही है यदि हमेशा हम उनके लिए ठंडा और साफ ताज़ा पानी रखें और जिस टंकी में हम उस पानी को रख रहे हैं उनको पिलाने के लिए उसमें नियमित अंतराल पर चूने की पुताई करते रहें, जिससे पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत ही प्यारा सा संदेश हमारे श्रोता साथियों को दिया है, तो आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका और वागड़ रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: બહેન બનુ જેમ કે આપણે આપણે વસ્તુ મનીષજી સર જોડે તકા હતા અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી બતાડ્યું હૈ કે પશુધન મેં પાણીની કમી ના હું હું કારણ થઈ શકે ને હરતે આપણને આપણા પશુને પાણી પાવશું। તો વાત તો ઘણા કની થઈ ગઈ હૈ ને હવે ટાઈમ ભી થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પડવાનું। તો સૂટો તો પડા પણ સાથે પહેલા હામરી લાયક ઓર કે મોરે પડા સૂટા।

0: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लकाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ।
1: सोराना नक काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार।
0: भिंडा तुरिये आलड़ी, कोरा ने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर।
1: सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ने आ खावानो आल।
0: अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगर रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातचीत रहने वाली है, समय की बर्बादी जीवन को कैसे प्रभावित करती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समय जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उपचार से सुधार किया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। यही कारण है कि समय को जीवन का आधार माना गया है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वो जीवन में सफलता, सम्मान और संतुलन प्राप्त करता है।
0: बिल्कुल।
1: जबकि जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गवाता है उसका जीवन धीरे धीरे अव्यवस्थित, तनावपूर्ण और असफलताओं से भर जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के आधुनिक युग में श्रोताओं, मोबाइल, सोशल मीडिया, आलस्य, अनावश्यक मनोरंजन और टालमटोल की आदत ने समय की बर्बादी को एक गंभीर समस्या बना दिया है।
0: बिल्कुल।
1: कहा भी गया है कि समय का जो करे सम्मान, सफलता बने उसकी पहचान।
0: बिल्कुल। तो आज जागृति जी इस विषय पर श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था और बातचीत भी रही थी कि आज हमारी बातचीत का विषय है समय की बर्बादी जीवन को कैसे प्रभावित करती है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, समय की बर्बादी सबसे पहले व्यक्ति के लक्ष्य को प्रभावित करती है। हर इंसान के जीवन में कुछ सपने होते हैं, उद्देश्य होते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई व्यवसायी तो कोई कलाकार। लेकिन केवल सपने दिखना पर्याप्त नहीं होता,
1: बिल्कुल
0: उन्हें पूरा करने के लिए समय का सही उपयोग आवश्यक है। जो विद्यार्थी पढ़ाई के समय मोबाइल चलाते हैं, घंटों बेकार बातचीत करते हैं या काम को कल पर टाल देते हैं, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी व्यक्ति के सपनों को कमजोर कर देती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि आज के समय में समय की बर्बादी एक बड़ी सामाजिक समस्या बनती जा रहा है। जैसा कि आपने बताया कि लोग घंटों मोबाइल, बेवजह की चर्चाएं, आलस्य और टालम टोल में समय गवा देते हैं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे यह आदत जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करने लगती है। कई लोग यह महसूस ही नहीं कर पाते जागृति जी कि छोटी छोटी समय की बर्बादियां मिलकर बड़े नुकसान का कारण बन रही है। समय की कीमत केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं रहती है श्रोता साथियों, बल्कि इसका असर स्वास्थ्य, रिश्तों, मानसिक स्थिति, परिवार और समाज सभी पर पड़ता है।
1: बिल्कुल,
2: जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता वह अक्सर जीवन में अवसर खो देता है और बाद में पछतावा महसूस करता है।
0: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, समय की बर्बादी मानसिक तनाव को भी बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति जरूरी कार्य समय पर पूरा नहीं करता अंजलि, तब उसके ऊपर काम का बोझ पड़ने लगता है। धीरे धीरे चिंता, घबराहट और आत्मविश्वास की कमी पैदा होने लगती है। कभी कभी विद्यार्थी परीक्षा के समय तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ष समय का सही उपयोग नहीं किया होता। इसी प्रकार नौकरी करने वाले लोग भी कार्य समय पर पूरा न होने के कारण तनाव महसूस करते हैं।
1: जी हाँ,
0: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समय की बर्बादी मानसिक शांति छीन लेती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि समय की बर्बादी का अर्थ केवल खाली बैठना नहीं है, ऐसे कामों में जरूरत से ज्यादा समय खर्च करना है जो जीवन में कोई सकारात्मक लाभ नहीं देते, समय की बर्बादी कहलाते हैं। श्रोता साथियों, शुरुआत में ये आदतें छोटी लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे इंसान की दिनचर्या, सोच दोनों प्रभावित करने लगती है। कहना चाहेंगे कि कई लोग काम को कल पर टाल देते हैं, धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। आज पढ़ाई नहीं कल करेंगे, आज काम नहीं बाद में कर लेंगे, अभी आराम कर लेते हैं, ऐसे सोच इंसान को धीरे धीरे पीछे ले जाती है। टालम टोल के कारण हम देखते हैं कि काम का दबाव बढ़ता जाता है, तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है, अवसर हाथ से निकल जाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समय की बर्बादी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को रोक देती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नई चीजें सीखना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि व्यक्ति अपना समय केवल मनोरंजन, गपशप और आलस्य में बिताएगा तो वो कभी अपनी प्रतिभा को विकसित नहीं कर पाएगा। जो लोग समय का सदुपयोग करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, नई कला सीखते हैं, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, वही समय बर्बाद करने वाले लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। जैसे कि समय ही धन है, यदि कोई व्यक्ति समय पर अपने कार्य नहीं करता अंजलि, तो उसकी आय और अवसर दोनों ही कम हो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: व्यापारी यदि समय का पालन न करे, किसान यदि सही समय पर खेती न करे या कर्मचारी समय पर काम पूरा न करे तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है।
1: बिल्कुल,
0: आज दुनिया में वही लोग सफल है जिन्होंने समय की कीमत समझी और उसका सही उपयोग किया।
2: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि समय की बर्बादी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं है, इसका असर परिवार पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा नहीं करता तो परिवार में तनाव बढ़ता है, आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, रिश्तों में दूरी आने लगती है। कई बार लोग मोबाइल और मनोरंजन में इतना समय बिताते हैं कि परिवार के साथ बातचीत और अपनापन कम होने लगता है।
0: बिल्कुल,
2: समय की बर्बादी श्रोता साथियों धीरे धीरे मानसिक दबाव भी बढ़ाती है। जब जरूरी काम अधूरे रह जाते हैं तो व्यक्ति जो है वो चिंता महसूस करता है, अपराध बोध रहता है और तनाव में रहने लगता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि वह जीवन में पीछे छूट रहा है।
0: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि समय की बर्बादी रिश्तों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। आज लोग मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार को समय देना भूलते जा रहे हैं। माता पिता, भाई बहन और मित्रों के साथ बिताया गया समय रिश्तों को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जब व्यक्ति केवल अपने मनोरंजन में समय गवाता है तब रिश्तों में दूरी आने लगती है, परिवार में संवाद कम हो जाता है और अकेलापन बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समय की बर्बादी स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाती है। देर रात तक मोबाइल चलाते हैं हम, घंटों टीवी देखते हैं, बिना उद्देश्य के समय बिताते हैं, हमारा जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। इससे नींद पूरी नहीं होती, आंखों पर असर पड़ता है और शरीर में आलस्य बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अंजलि व्यायाम, योग, स्वस्थ दिनचर्या अपनाता है, जिससे उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था कि किस तरीके से अगर हम समय की बर्बादी करते हैं तो उसका असर जो है पारिवारिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य और बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। श्रोता साथियों, जीवन में कई अवसर केवल एक बार आते हैं। अगर व्यक्ति सही समय पर तैयारी न करे तो वो मौका हाथ से निकल सकता है।
1: बिल्कुल,
0: नौकरी का अवसर, पढ़ाई का मौका, रिश्तों को सुधारने का समय, सीखने और आगे बढ़ने के अवसर, समय की बर्बादी इन सभी संभावनाओं को कमजोर कर सकती है। कहना चाहेंगे जागृति जी श्रोता साथियों से कि जब समाज में बड़ी संख्या में लोग समय के प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो उसका असर विकास पर भी पड़ता है। काम में देरी, जिम्मेदारी की कमी, अनुशासनहीनता, उत्पादकता में गिरावट, ये सब सामाजिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। जो समय का सम्मान करने वाला समाज अधिक संगठित होता है और मजबूत भी होता है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करने के लिए हमें सही दिनचर्या बनानी होगी। जरूरत और गैर जरूरी कामों में फर्क समझना होगा, मोबाइल का सीमित उपयोग करना होगा और छोटे छोटे लक्ष्य तय करने होंगे और काम को टालने की आदत छोड़नी होगी। परिवार और खुद के लिए समय निकालना होगा, तभी हम हमारे जीवन को संतुलित कर पाएंगे।
1: बिल्कुल अंजलि, आपने सही कहा। और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, हमें समझना होगा कि समय केवल घड़ी की सुई नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की धड़कन है।
0: बिल्कुल,
1: हर बीतता पल हमें आगे बढ़ने का अवसर देता है। यदि हम समय का सम्मान करेंगे तो जीवन में प्रगति, खुशी और सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन यदि हम समय को व्यर्थ गवाते रहेंगे तो एक दिन पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा।
0: ये कह सकते हैं कि समय की बर्बादी जीवन को कमजोर, अव्यवस्थित और दुखी बना देती है। ये हमारे सपनों, स्वास्थ्य, रिश्तों और भविष्य सभी को प्रभावित करती है। इसलिए हर व्यक्ति को समय का महत्व समझना होगा, हर पल का सही उपयोग करना होगा। जीवन की असली सफलता उसी को मिलती है अंजलि, जो समय को अपना सबसे बड़ा मित्र बना लेता है।
1: जी हाँ,
0: समय रुकता नहीं श्रोता साथियों किसी के लिए भी, इसलिए हर पल को मूल्यवान बनाइए।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि समय जीवन की वह अनमोल धरोहर है जिसे न खरीदा जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। इसलिए इसका सही उपयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
0: श्रोता साथियों, समय की बर्बादी धीरे धीरे आदत बनकर इंसान की सोच, काम, रिश्तों और भविष्य को प्रभावित करने लगती है। जीवन में सफलता केवल बड़े सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि समय का सही उपयोग करने से मिलती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचता है।
1: बिल्कुल,
0: जबकि लापरवाही और टालमटोल इंसान को पीछे धकेल देती है। श्रोता साथियों, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करें और समझे कि हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है।
1: जी हाँ,
0: छोटी छोटी अच्छी आदतें जीवन की दिशा बदल सकती है। अगर व्यक्ति समय को समझना सीख जाए तो वह न केवल अपना जीवन बेहतर बना सकता है बल्कि परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।
1: बिल्कुल अंजलि, हमारे श्रोता साथियों को स्पष्ट हो जाता है कि समय की बर्बादी केवल कुछ घंटों या दिनों का नुकसान नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे पूरे जीवन की दिशा बदल देती है।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है वो अवसर, आत्मविश्वास, सफलता और खुशियों को अपने हाथों से खो देता है।
0: जी जी,
1: बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता श्रोता साथियों, इसलिए हर पल की कीमत समझना बहुत जरूरी है। जीवन का हर एक क्षण नई शुरुआत, एक नया अवसर और एक नई उम्मीद लेकर आता है। यदि हम आज समय का सही उपयोग करना सीख लेंगे तो हमारा आने वाला कल उज्जवल, सफल और सम्मानपूर्ण बन जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये ध्यान लेना चाहिए कि हम आलस्य, टालमटोल और अनावश्यक कार्यों में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करेंगे। हम अपने समय को शिक्षा, मेहनत, परिवार, समाज और आत्मविकास के लिए उपयोगी करेंगे, क्योंकि समय वही दीपक है जो जीवन के अंधकार को सफलता के प्रकाश में बदल देता है।
0: बिल्कुल,
1: जब इंसान समय का सम्मान करता है तब समय भी उसे सम्मान, पहचान और ऊंचाइयां देता है। इसीलिए श्रोताओं, हर सुबह स्वयं से कहना चाहिए कि आज का एक एक पल मेरे सपनों की नींव है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी या नहीं जाने दूंगा।
0: बिल्कुल,
1: कहा गया है श्रोता साथियों कि समय को मत गवाओ, यही जीवन का सच्चा धन है और जो हर पल का मूल्य समझता है सफलता उसी के संग होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हमने जाना कि समय का क्या महत्व है और समय की बर्बादी किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल,

0: आखिर इस गीत के साथ विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम में समय के महत्व को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vangdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रहो, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जिनी हवा में आपड़े हाल रहो, ई भी आपड़ा थकी कई आश लागे है। हो गए, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती, लेकिन आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
2: होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
1: होवे, आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

करना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि दोस्तों हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर हाजिर होते हैं तो बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर।
0: जी हाँ,
1: जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विषय होता है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं। आज हम बात करने वाले हैं मनीषा हमारे श्रोता साथियों से हमारे रात के खान पान को लेकर।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि कई बार हमारे जो श्रोता साथी हैं वो रात के खान पान को लेकर गंभीर नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और कई बार ऐसा होता है कि वो किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेवी खाना खा लेते हैं।
0: जी हाँ,
1: जिसके कारण हम देखते हैं कि उन्हें एसिडिटी, कब्ज, पेट फूलना और कह सकते हैं कि खट्टी डकार आना, ऐसी ढेर सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो ऐसे में दोस्तों आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानेंगे कि रात का खान पान हमारा कैसा होना चाहिए और इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी। लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं रात के खान पान को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि मनुष्य के स्वस्थ जीवन में भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा भोजन हम करते हैं वैसा ही हमारा शरीर और मन बनता है।
1: बिल्कुल,
0: आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में श्रोता साथियों, लोग सुबह और दोपहर के भोजन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन रात के भोजन को अक्सर हल्के में ले लेते हैं। कशिश
1: जी जी,
0: कई लोग देर रात तक भारी भोजन करते हैं, तली भुनी चीजें खाते हैं, या भोजन करने के तुरंत बाद हम देखते हैं कि वो सो जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी आदतें श्रोता साथियों धीरे धीरे शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि रात का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह शरीर को आराम देने, ऊर्जा संतुलित बनाए रखने और अगले दिन के लिए शरीर को तैयार करने का माध्यम भी है।
1: बिल्कुल,
0: यदि रात का खान पान सही हो तो श्रोता साथियों नींद भी अच्छी आती है, पाचन तंत्र हमारा मजबूत होता है और शरीर भी हमारा स्वस्थ बना रहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, दूसरी ओर यदि रात का भोजन गलत हो तो मोटापा, गैस, अपच, अनिद्रा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर बात करें तो हम देखते हैं कि रात के भोजन का एक विशेष महत्व बताया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो शरीर है वो दिन भर काम में लगा रहता है। सुबह और दोपहर में शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि दोस्तों उस समय शारीरिक गतिविधियां अधिक होती है, लेकिन वहीं रात का जो समय होता है वो विश्राम का समय होता है।
0: जी हाँ कशिश,
1: इसलिए रात का भोजन हमेशा हल्का, सुपाच्य और संतुलित होना चाहिए। साथियों, हम देखते हैं कि रात में हमारा शरीर धीरे धीरे आराम की अवस्था में पहुंचता है। मनीषा, ऐसे समय में यदि भारी तला भुना या फिर ज्यादा मसालेदार भोजन कर लिया जाए तो पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इससे जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया था कि गैस, अपच, एसिडिटी और नींद से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, रात का सही भोजन शरीर को आराम देता है।
0: जी हाँ,
1: नींद को बेहतर बनाता है और अगले दिन शरीर को फिर से ऊर्जा से भर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रात के भोजन का हमारे स्वास्थ्य के लिए विशेष महत्व होता है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि रात का भोजन पूरे दिन के खान पान का अंतिम भाग होता है। दिन भर काम करने के बाद श्रोता साथियों शरीर को आराम और संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है।
1: जी हाँ,
0: यदि रात का भोजन उचित मात्रा में और सही प्रकार से हो कशिश, तो शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है।
1: बिल्कुल,
0: और हमारी पाचन क्रिया है वो भी ठीक से काम करती है। श्रोता साथियों, रात का भोजन हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि पाचन तंत्र की कार्य क्षमता, नींद की गुणवत्ता, शरीर का वजन, मानसिक शांति, हृदय स्वास्थ्य और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता। श्रोता साथियों, यदि भोजन बहुत भारी हो तो शरीर को उसे पचाने में अधिक मेहनत करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल,
0: इससे नींद प्रभावित होती है हमारी और साथ ही सुबह सुस्ती महसूस होती है। वही श्रोता साथियों, अगर हम हल्का भोजन करते हैं और संतुलित भोजन करते हैं तो इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है और हमारी मानसिक शांति भी सही बनी रहती है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा मनीषा। तो जैसा कि हम हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं रात के भोजन के महत्व को लेकर,
0: जी,
1: और हमारा रात का भोजन कैसा होना चाहिए ये भी हम श्रोता साथियों को बताएंगे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों बात कर रहे हैं कि रात का भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, और गीत से पहले हम रात के भोजन के महत्व को लेकर बातचीत कर पाए थे।
1: जी हाँ,
0: अब यही अगर बात करें मनीषा कि रात का भोजन हमें किस समय करना चाहिए।
1: जी,
0: क्योंकि जैसा कि आपने गीत से पहले हमारे साथियों को बताया था कि कई बार हम देर रात तक भोजन करते हैं, जिसके कारण भी हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और हमें पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में दोस्तों आपको बताएं तो कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार भी ऐसा बताया जाता है कि रात का भोजन सोने से लगभग 2 से 3 घंटे पहले हमें कर लेना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: यदि कोई व्यक्ति रात में 10 बजे सोता है मनीषा, तो उसे 7 से 8 बजे के बीच भोजन कर लेना चाहिए। दोस्तों, देर रात भोजन करने से भोजन ठीक से नहीं पचता है, क्योंकि सोते समय शरीर की गतिविधियां धीमी हो जाती है। इससे भोजन पेट में भारीपन पैदा करता है दोस्तों।
1: जी,
0: और आजकल तो हम ये देखते हैं कि कई लोग मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए या फिर काम करते करते बहुत देर तक भोजन करते रहते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और मनीषा, ये जो आदत है हमारे श्रोता साथियों की, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है।
1: जी हाँ,
0: तो ऐसे में हम हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि अगर उन्हें भी आदत है देर रात तक भोजन करने की या फिर लेट भोजन करने की, तो उन्हें हम कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि उन्हें भी सोने से 2 से 3 घंटे पहले भोजन कर लेना चाहिए।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि दिन के समय हमारा शरीर अधिक सक्रिय रहता है, इसीलिए हमारा शरीर ही वो भोजन को जल्दी पचा लेता है। लेकिन श्रोता साथियों, रात में शरीर है वो हमारी आराम की अवस्था में होता है। इस समय भारी भोजन करने से पाचन तंत्र हमारे लिए अतिरिक्त दबाव डालता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हल्का भोजन करने से हमें कई प्रकार के फायदे मिलते हैं, जैसे कि हमारा पेट हल्का रहता है, हमें नींद अच्छी आती है, साथ ही हमारा मोटापा नियंत्रित रहता है, शरीर में आलस कम होता है और हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हल्के भोजन में दाल, रोटी, हरी सब्जियां, सलाद, खिचड़ी, दलिया, ये सभी आप शामिल कर सकते हैं। वहीं अत्यधिक तेल मसाले वाला भोजन, फास्ट फूड और मिठाइयों का सेवन कम करना चाहिए साथियों।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, रात के भोजन के खान पान के लिए हमें हरी सब्जियों का सेवन करना है, जैसे कि हरी सब्जियों में विटामिन, खनिज और रेशों से भरपूर होता है। ये भोजन श्रोता साथियों हल्का होता है और हमारे लिए पौष्टिक होता है। रात के भोजन में पालक, लौकी, तोरई, भिंडी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां आप खा सकते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होती हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि रात का भोजन पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। इसमें श्रोता साथियों, ऐसे खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए जो आसानी से पच जाएं और शरीर को जरूरी पोषण भी देते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हमें दालों को शामिल करना है, हरी सब्जियों को शामिल करना है मनीषा, यही हमारे दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि हम रात में सीमित मात्रा में रोटी भी खा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये भी एक अच्छा कह सकते हैं दोस्तों विकल्प है। और साथ ही आप मोटे अनाज भी शामिल करें, जैसे कि बाजरा, ज्वार और रागी। दोस्तों, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। अगर सलाद की बात करें तो सलाद शरीर को फाइबर देता है और पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें दोस्तों आप खीरा, गाजर, टमाटर, चुकंदर जैसे पदार्थ ले सकते हैं, ये काफी उपयोगी होते हैं। और रात में हम देखते हैं कि दही या छाछ का सेवन भी किया जा सकता है। दोस्तों, खास तौर पर गर्मियों में रात के भोजन के साथ थोड़ी मात्रा में छाछ या दही पाचन में मदद कर सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: लेकिन दोस्तों बहुत ठंडी चीजों से आपको बचना है। साथ ही सब्जियों का सूप हल्का और पौष्टिक होता है, तो आप इसे भी शामिल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को आराम देगा और जल्दी पच भी जाएगा।
1: जी हाँ कशिश, ये तो हमारे श्रोता साथियों को आपने बताया कि रात के समय हमें कौन सा भोजन करना है। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि हमें रात के समय किन चीजों को खाने से बचना है, तो श्रोता साथियों, हमें तला भुना भोजन नहीं करना है, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना है, और साथ ही दोस्तों हमें अधिक मिठाइयां भी नहीं खानी है, ठंडे पेय का सेवन नहीं करना है, और साथ ही श्रोता साथियों, हमें अधिक मसालेदार भोजन भी नहीं करना है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से दोस्तों को ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों रात का खान पान हमारे स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। सही समय पर संतुलित और हल्का भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, नींद अच्छी आती है और अनेक बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में दोस्तों हमें तला भुना, जंक फूड और देर रात तक भोजन करने की आदत से बचना चाहिए, क्योंकि घर का ताजा और पौष्टिक भोजन ही सबसे अच्छा स्रोत हो सकता है।
1: जी बिल्कुल,
0: आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन का आधार होता है। यदि हम अपने खान पान को सुधार ले श्रोता साथियों, तो जीवन अधिक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल बन सकता है। ऐसे में आपसे यही कहना चाहेंगे कि भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए करें। सही खान पान ही अच्छे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है साथियों।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि रात का खान पान हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव डालता है। यदि हम समय पर संतुलित और हल्का भोजन करते हैं साथियों, तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ भोजन न केवल शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि हमारे मन को भी प्रसन्न रखता है। श्रोता साथियों, आज आवश्यकता इस बात की है कि लोग स्वाद के पीछे भागने के बजाय स्वास्थ्य को महत्व दें। घर का ताजा भोजन, पौष्टिक भोजन अपनाकर स्वयं को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। सही खान पान, अच्छी नींद, मजबूत पाचन और लंबी आयु श्रोता साथियों इसी का आधार है। इसीलिए श्रोता साथियों, प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह रात के भोजन में सादगी, संतुलन और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। स्वस्थ खान पान ही श्रोता साथियों स्वस्थ जीवन की कुंजी है।
0: बिल्कुल मनीषा, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी है।
1: जी हाँ,
0: और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत हम सुनवा दें यहाँ पर।
1: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वाकर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3270001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और स्वागत करती हूं श्रोता साथियों आप सभी का हमारे आज की विशेष कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि सपनों की उड़ान कार्यक्रम जो हमारा है वो हमारे लिए सबसे प्रेरणादायी कार्यक्रम है, क्योंकि हम जो युवा साथी हैं वो कहीं ना कहीं

हर बार हर किसी चीज़ को लेकर परेशान ही रहते हैं, क्योंकि वर्तमान का हमारा चलन ही ऐसा हो गया है, हमारी जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि हम हर वक्त परेशान ही रहते हैं। तो कार्यक्रम सपनों की उड़ान में श्रोता साथियों, हम आपके लिए कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनके बारे में जानकर आपको अंदर से आत्मविश्वास भी मिलता है और आप अपने जीवन में आगे भी बढ़ पाते हैं। तो आज भी श्रोता साथियों, ऐसा ही एक नया विषय मैं कार्यक्रम के माध्यम से लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे सकारात्मक सोच की शक्ति की, क्योंकि श्रोता साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी सोच का एक अलग ही महत्व होता है। देखते हैं ना कि ऐसा कहा भी जाता है कि जैसी सोच होती है वैसा ही हमारा मन होता है, और जैसा हमारा मन होता है वैसा हमारा तन होता है। तो श्रोता साथियों, हमारे पूरे जीवन की जो गाड़ी है वो हमारी कह सकते हैं कि सोच पर ही टिकी हुई है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी। हम जानेंगे साथियों कि सकारात्मक सोच क्या है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो इसके कौन कौन से फायदे हमें होने वाले हैं। तो मजा बहुत आएगा कार्यक्रम में साथियों, ढेर सारी बातें होंगी, गीत संगीत भी होंगे। तो श्रोता साथियों, गीत संगीत से मुझे याद आया कि पहले मैं आपको शुरुआत में गीत संगीत सुनवा देती हूँ, फिर हम बातचीत की फिर से शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस गीत के साथ मनोरंजन करते हैं और फिर हम हमारी बात को फिर से जारी रखेंगे।

प्यारे श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है सपनों की उड़ान कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो बता ही दिया कि आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच की शक्ति को लेकर। साथियों, जीवन में हम कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से जरूर गुजरते हैं जब हमें सब कुछ कठिन लगता है। देखते हैं कि कभी पढ़ाई का दबाव है, कभी काम की चिंता है, कभी भविष्य की अनिश्चितता। साथ ही साथियों, ऐसे कई कारण होते हैं जो मन को हमारे कमजोर कर देते हैं, लेकिन इन सब के बीच एक शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है, और वह है हमारी सकारात्मक सोच की शक्ति। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं दोस्तों सकारात्मक सोच क्या है और हमारे जीवन को ये कैसे बदल सकती है इसको लेकर, और हम इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं। अगर साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सकारात्मक सोच होती क्या है, तो साथियों सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं तो हर व्यक्ति के जीवन में आती ही है। साथियों, सकारात्मक सोच का असली अर्थ ये है कि हम कठिन परिस्थितियों में खुद को उम्मीद और समाधान के साथ कैसे जीवित रख सकते हैं, और उन्हीं कठिन परिस्थितियों में हम उम्मीद के साथ समाधान को कैसे खोजते हैं। श्रोता साथियों, क्योंकि जब इंसान सकारात्मक सोच रखता है श्रोता साथियों, तो वह हर समय को अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत के रूप में देखता है। ऐसे तो साथियों कई लोग ये भी मानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है, और हम देखें तो ये बात सत्य भी है, क्योंकि श्रोता साथियों हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना है कि जीवन एक संघर्ष है। अगर हमें आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो समस्याओं का सामना करना तो हमें सीखना ही होगा, क्योंकि श्रोता साथियों ऐसा कहा जाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम सही समय पर ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है, मेरे पास क्षमता नहीं है इसे करने की, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास इससे कमजोर होने लगता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसके विपरीत हम ये सोचे कि मैं कोशिश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसी ढेर सारी बातें हैं साथियों, तो वही सोच हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता जाता है। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बनते जाते हैं, जैसा हमारा मन है वैसा हमारा तन है साथियों। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम अपने अंदर नकारात्मकता को भरते ही जाएंगे तो हमारा स्वभाव इससे बदल जाएगा। और देखेंगे श्रोता साथियों कि अगर हम हमारे अंदर नेगेटिविटी को लेकर घूमते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे पास आना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मन में यही चलेगा कि इससे कुछ भी पूछो या इसके बारे में कुछ भी बात करो, ये हमारी बात को सहमत होगा ही नहीं, ये तो उल्टी बात ही करेगा। तो श्रोता साथियों, इन सभी बातों का एक ही मतलब निकलता है कि हमें हमारे जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना है, क्योंकि सकारात्मक सोच ही वह शक्ति है साथियों जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने में मदद करेगी, साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक सोच के माध्यम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे बहुत ही अच्छी चल रही है, ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। आगे भी श्रोता साथियों ढेर सारी बातें हम करेंगे कि सकारात्मक सोच के क्या फायदे होते हैं, लेकिन अभी हम मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में, क्योंकि जब कार्यक्रम में हम बात कर ही रहे हैं साथियों, तो मनोरंजन करना भी जरूरी है। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों बातें बहुत अच्छी चल रही थी, हम जान रहे थे कि हमारे जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है। अगर इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊं और गीत से पहले जैसा कि साथियों हमने जाना था कि सकारात्मक सोच का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम जैसा कि जान पाए थे कि जब हम सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो जो असंभव कार्य भी है वो भी हमें संभव लगने लगते हैं। हमारे अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है साथियों, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये कार्य तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वहीं इसके विपरीत देखें, हमारे अंदर नकारात्मक सोच है तो हमें हर चीज़ मुश्किल लगेगी। हम अगर संघर्ष कर रहे हैं साथियों तो उसमें भी हमें बार बार असफलता मिलेगी, और उस असफलता की वजह से श्रोता साथियों हमारे अंदर निराशा आ जाती है, जिसके कारण हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में ये बात घर कर जाती है कि मुझसे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सब भी मुझे यही कहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि लोग तो बातें करेंगे। श्रोता साथियों, आपने एक बात भी सुनी होगी कि लोगों का काम है कहना, लेकिन श्रोता साथियों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि जिंदगी हमारी है, हमें क्या करना है वो हमें तय करना है। हम नकारात्मक सोच लेकर घूमते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि नुकसान ही नुकसान है, वहीं अगर हम सकारात्मक सोच को लेकर बैठे हैं, हमारे अंदर सकारात्मक सोच है श्रोता साथियों, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपका जीवन ही बिल्कुल बदल जाएगा। आप हर काम को करने के लिए तत्पर रहेंगे, आपको नेगेटिविटी में भी श्रोता साथियों पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो अगर अब यही बात करें कि सकारात्मक सोच के क्या लाभ होते हैं, तो साथियों सकारात्मक सोच हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव लेकर आती है। सबसे पहला लाभ तो ये है श्रोता साथियों कि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें अपने अंदर छिपी क्षमता का एहसास होने लगता है, और हम देखते हैं श्रोता साथियों कि उस क्षमता की वजह से, उस आत्मविश्वास की वजह से हम अपने हर कार्य को ठीक तरीके से सही ढंग से कर पाते हैं। तो श्रोता साथियों कहने का मतलब यही है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को जगह देनी चाहिए, क्योंकि आपको अपने जीवन में श्रोता साथियों दो तरह के लोग मिलेंगे, सकारात्मक लोग भी और नकारात्मक लोग भी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप पे ये निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किसके गुणों को शामिल करते हैं। अगर आप श्रोता साथियों नकारात्मक लोगों की बातों को समझते हैं, उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं, नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, उनकी बातों में रुचि रखते हैं, तो आपके अंदर भी नेगेटिविटीज ही आएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी संगति में रहते हैं श्रोता साथियों, तो आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी। तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि श्रोता साथियों आपको अपने जीवन में सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ ही संगति बनानी चाहिए, क्योंकि यही साथियों हमारे जीवन को सुखद, खुशहाल और सफल बना सकता है। तो इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों अब मैं कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो विदा तो जरूर लूंगी साथियों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं श्रोता साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्र द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सपनों की उड़ान, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: आंगनवाड़ी जाई ने तारो नाम लगाओ, भारी पोग बहन तू जासे तीन कराओ। सोराना नक्काबजू, नाना राको वार, साफ सफाई राखजू, खाजू सब्जी दार। भिंडा तुरिये आलड़ी, कोराने वालोर, रोपो खाओ सब्जिये, डीले आवे जोर। सीरो दलियो राबड़ी, थूली सोका दाल, पांसे महीने बाल ने आ खवानो आल। अणी वातनु ध्यान राखो, आपणो जीवन सुरक्षित राखो।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। होटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून हुआ है।

0: अरे गोरी, इतनी सुस्त क्यों दिख रही हो? कुछ खाया पिया नहीं है क्या?
1: अरे दीदी, क्या करूं? कुछ खाने पीने का तो मन ही नहीं करता है मेरा।
0: अरे गोरी, ये तो गर्भावस्था में होता ही है, जी मचलाएगा, खाने का मन नहीं करेगा। पर अभी तो खाना ज्यादा जरूरी है, और खाने में भी तुम्हें दूध, दही, दालें, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इससे तुम्हारे बच्चे का विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा।
1: अरे वाह दीदी, अगर ये सब खाने से बच्चे का विकास अच्छा होगा तो मैं आज से ही दूध पीना शुरू कर दूंगी, और साथ में हरी सब्जियां और दाल भी खूब खाऊंगी।
0: ये हुई ना बात गोरी।
2: याद रहे, गर्भावस्था में सबसे जरूरी है पोषक खाना। वागर रेडियो द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।
3: तो साथियों, ये थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यही समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।